दोस्तों, सुबह सिर्फ शरीर को नहीं विचारों को भी जगाती है। थोड़ा चलिए, गहरी सांस लीजिए, खुला आसमान देखिए। जीवन कभी कभी बहुत आसान होता है, हम ही उसे बहुत कठिन बना देते हैं। कहते भी हैं, जो सुबह को अपना लेता है दिन उसका साथ देता है।

हर दिन किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आज अपने जैसा दिन बनाइए, एक मुस्कान बांटिए, एक अच्छी बात कहिए, जिंदगी का एक नया विचार सोचिए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी।

दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नए विचार और नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और सुबह का स्वागत दिल से कीजिए। अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी देर में अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है।

सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले मातृभूमि अपने देश को वंदन करते हुए आइए सुनते हैं ये मातृवंदना।

अभी आपने सुनी समोसर में ये मातृवंदना। देश को वंदन करने के बाद आइए उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में वंदन करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे पंडित संजीव अभ्यंकर के आवाज़ में ये भक्ति रचना। लीजिए सुनते हैं अगला भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है अर्थ और अनर्थ। इसमें जानकारी दे रहे हैं श्री राजेंद्र प्रसाद।
1: प्रायः ऐसा होता है कि जब हम किसी वक्ता की बात सुनते हैं तो उस बात का वही अर्थ नहीं लगाते जो वक्ता लगाता है। हम वक्ता की बात पर अपने निजी अर्थ की चादर डाल देते हैं और इसी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव इस संबंध में एक दृष्टांत दिया करते थे। वे कहते थे, एक गुरु के कई शिष्य थे। गुरु जी एक दिन शिष्यों को समझा रहे थे कि सबके अंदर नारायण है, बल्कि वो कहें कि सब कुछ नारायण ही बने हुए हैं। गुरु जी की इस बात को एक शिष्य ने पकड़ लिया। एक दिन वो शिष्य राजमार्ग पर कहीं जा रहा था, सामने से एक हाथी आ रहा था। शिष्य ने सोचा कि हाथी भी नारायण और मैं भी नारायण, तो फिर नारायण को नारायण से क्या डर। शिष्य महोदय बीच सड़क पर खड़े हो गए। हाथी का महावत चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो, हटो सामने से, इतना बड़ा हाथी नहीं दिखाई पड़ता आपको, हटिए हटिए। मगर शिष्य महोदय अपनी समझ में गुरु जी की बात पकड़े हुए थे, मैं भी नारायण हाथी भी नारायण, फिर नारायण को नारायण से क्या डर। तब तक हाथी बिल्कुल पास आ गया। उसने शिष्य को सूंड में लपेटा और सड़क के एक किनारे जोर से फेंक दिया। शिष्य महोदय को बड़ी चोट आई, वे उठ भी नहीं सके। बड़ी देर होने पर गुरुजी को चिंता हुई कि शिष्य गया कहाँ। अन्य चेलों को भेजा कि पता लगाएं। वे लोग थोड़ी देर बाद घायल शिष्य को उठाकर गुरुजी के पास लाए। गुरुजी के ये पूछने पर कि ये सब हो कैसे गया, शिष्य ने शिकायती स्वर में कहा, गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि सब कुछ नारायण है, तो फिर हाथी नारायण ने मुझ नारायण को फेंक क्यों दिया। गुरुजी बोले, बेटा ठीक है कि हाथी भी नारायण है और तुम भी नारायण हो, पर ये क्यों भूल गए कि महावत भी नारायण है। जब महावत नारायण ने तुमको सामने से हट जाने को कहा तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी। परमहंस देव कहते हैं कि ये ठीक है कि ठग भी नारायण है और चोर भी नारायण है, पर साधु नारायण की तो सेवा करनी चाहिए, परंतु चोर नारायण और ठग नारायण से दूर ही रहना चाहिए। गुरु के इस उपदेश का कि सब कुछ नारायण है, शिष्य ने अधूरा अर्थ लगाकर अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसा हम अपने जीवन में प्रायः करते रहते हैं। किसी व्यापक अर्थ का एक हिस्सा अपनी इच्छा और चाहत के अनुसार चुन लेते हैं और बाकी अर्थ को छोड़ देते हैं। ये अधूरा अर्थ ही अनर्थ बन जाता है। जैसे शिष्य ने सब कुछ नारायण है में से अपने और हाथी को तो नारायण मान लिया, क्योंकि वो चाहता था कि हाथी जैसा बलशाली जीव उसको रास्ता दे दे, लेकिन उसने महावत को नारायण नहीं समझा, क्योंकि महावत की मनाही उसकी अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं जान पड़ी। इसीलिए अर्थ का अनर्थ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था अर्थ और अनर्थ। इसमें जानकारी दे रहे थे श्री राजेंद्र प्रसाद।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसमें गायक कलाकार थी अनुराधा पोडवाल। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि समय की। कृषि समय की में आज का विषय है टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है। यहाँ तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, इसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इस सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किनकी कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम नर्सरी खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास की अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम वेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की। कृषि समय की में आज का विषय था टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे पुष्पेंद्र सिंह। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए इस सभा के शेष अनुप्रसारित और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता, विषय होगा सांप्रदायिक सद्भाव, और 7:20 पर आप सुन सकते हैं काव्य पाठ। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम

7:45 पर आप सुन सकते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश का कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:00 आप सुनेंगे लोक रंग। लोक रंग में कलाकार होंगे राजेंद्र कुमार भार्गव और राजेश कुशवाहा। 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे हमारे भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। 10:05 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और इसमें गायक कलाकार होंगे पिनाज मसानी।

10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। 12:30 पर सुनेंगे आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

0: तेहे परमाणम अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायां उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामंत्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्ड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृङ्खलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए

रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय है सांप्रदायिक सद्भाव। श्रोताओं, हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, संस्कारों, रीति रिवाजों का देश है। विभिन्नताओं में एकता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हमारे देश भारत में जगह जगह विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं और संस्कृतियाँ, रीति रिवाज भी हैं। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और आपसी भाईचारे की भावना से रहते हैं। यही श्रोताओं हमारी ताकत है, यही इस देश की पहचान है और यह ताकत हमारी आज की नहीं है वरन सदियों से चली आ रही है। विभिन्न अवसरों पर कुछ विदेशी ताकतों ने हमारी इस संस्कृति को तोड़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो असफल हुए। श्रोताओं, हमें इसी भाईचारे की भावना के साथ रहना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। हमारे देश की ताकत एक साथ मिलकर रहने में ही है। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न जातियों के सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर जो आपसी भाईचारे की मिसाल हम भारतवासियों ने समय समय पर दिखाई है, वो अद्भुत है। ऐसी मिसाल शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में मिलती होगी। लेकिन श्रोताओं, बीच बीच में कुछ असामाजिक तत्व हमारी इस एकता में फूट डालने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हम भाईचारे की भावना को छोड़कर आपसी मतभेद और मनभेद पैदा कर लें और इस तरह से वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस वक्त हमें अत्यधिक सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और किसी भी प्रकार के बहकावों में ना आने की ज़रूरत होती है। हमें पूरी समझदारी और ईमानदारी के साथ विवेकपूर्वक कार्य करना होगा। देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देना होगा। हमें यह याद रखना है कि ये देश गांधी जी का देश है, अहिंसा का देश है और अहिंसा हमारा परम धर्म है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि हम सब इन बातों पर विचार करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। श्रोताओं, आज की लघु वार्ता अब यहीं समाप्त होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया

0: अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विवेकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉस ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक

जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है काव्य पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल की गजलें।
1: नमस्कार। नर्स का यह है कि आसमां से उतर गया पानी, आसमां से उतर गया पानी, गांव गलियों में भर गया पानी। आसमां से उतर गया पानी, गांव गलियों में भर गया पानी। एक मंजिल चढ़े हैं इस कारण यार घर में पसर गया पानी। एक मंजिल चढ़े हैं इस कारण यार घर में पसर गया पानी। घूमकर हर जगह बढ़ा आगे, घूमकर हर जगह बढ़ा आगे, और फिर अपने घर गया पानी, और फिर अपने घर गया पानी। एक झोंका हवा का आते ही नर्म शाखों से झर गया पानी। एक झोंका हवा का आते ही नर्म शाखों से झर गया पानी। खोल दी आपने सभी नहरें। यहाँ तक आपने देखा कि ये प्रकृति का आलम्बनात्मक चित्रण था, अभिदात्मक। और अब कुछ शेर मैं ऐसे प्रस्तुत करना चाहूँगा जहाँ प्रतीकों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है, कुछ संकेत किए हैं। देखिएगा कि एक झोंका हवा का आते ही नर्म शाखों से झर गया पानी। खोल दी आपने सभी नहरें, खोल दी आपने सभी नहरें, पर वहां से किधर गया पानी। आपकी चेतना के चेहरे से, आपकी चेतना के चेहरे से आज लगता उतर गया पानी। आपकी चेतना के चेहरे से आज लगता उतर गया पानी। दर्द पलकों पे, दर्द नजरों में बूंद जैसे बिखर गया पानी। दर्द पलकों पे, दर्द नजरों में बूंद जैसे बिखर गया पानी। है कोई यार जो मेरी दहरी, है कोई यार जो मेरी दहरी, खोद कर नींव भर गया पानी। है कोई यार जो मेरी दहरी, खोद कर नींव भर गया पानी। लोग चेते हैं उस घड़ी केवल जब भी सिर से गुजर गया पानी। लोग चेते हैं उस घड़ी केवल जब भी सिर से गुजर गया पानी। काफिये की रदीफ की सुनकर बांध तो ली बहर गया पानी। पानी हमारे बाहर हो या हमारे भीतर हमें प्रभावित करता है। एक गजल के कुछ शेर और देखें कि तमाशा लहर दर लहर देखते हैं, तमाशा लहर दर लहर देखते हैं, बड़ी देर तक

0: चश्मे तर देखते हैं, तमाशा लहर दर लहर देखते हैं, बड़ी देर तक चश्मे तर देखते हैं, टिकी है मकां पे नज़र देखते हैं, टिकी है मकां पे नज़र देखते हैं, हमें कब लगेगा ये घर देखते हैं, टिकी है मकां पे नज़र देखते हैं, हमें कब लगेगा ये घर देखते हैं, जुबां पे रखा है जहर देखते हैं, जुबां पे रखा है जहर देखते हैं, किसी की दुआ का असर देखते हैं, जुबां पे रखा है जहर देखते हैं, किसी की दुआ का असर देखते हैं, वो बचपन की यादें वो किस्से किताबें, चलो साथ घर तक अमर देखते हैं, वो बचपन की यादें वो किस्से किताबें, चलो साथ घर तक अमर देखते हैं, नज़र को सुहाते हैं मंजर पुराने, नज़र को सुहाते हैं मंजर पुराने, नहीं देखना था मगर देखते हैं, नज़र को सुहाते हैं मंजर पुराने, नहीं देखना था मगर देखते हैं, मेरे हाथ बेटे की पहली कमाई, मेरे हाथ बेटे की पहली कमाई, लगाया था पौधा शजर देखते हैं। और आखिरी शेर है कि सफ़र की अंधेरों भरी ज़िंदगी में, सफ़र की अंधेरों भरी ज़िंदगी में, हुई है ये कैसी सहर देखते हैं, सफ़र की अंधेरों भरी ज़िंदगी में, हुई है ये कैसी सहर देखते हैं। और ज़िंदगी के कुछ और अनुभव गज़ल के कुछ और शेर देखिएगा कि कल ही तो खुशियों का रास्ता देखा था, कल ही तो खुशियों का रास्ता देखा था, उठकर जाने किसका चेहरा देखा था, कल ही तो खुशियों का रास्ता देखा था, उठकर जाने किसका चेहरा देखा था, ये भी अच्छा बहू साथ में ले आया, ये भी अच्छा बहू साथ में ले आया, मैंने भी बेटे का रिश्ता देखा था, ये भी अच्छा बहू साथ में ले आया, मैंने भी बेटे का रिश्ता देखा था, कैसे बोलूं तुमसे इसी महीने में, कैसे बोलूं तुमसे इसी महीने में, मैंने आने वाला खतरा देखा था, कैसे बोलूं तुमसे इसी महीने में, मैंने आने वाला खतरा देखा था, बोझ लाद कर नाप रहा है ये रास्ते, बोझ लाद कर नाप रहा है ये रास्ते, बचपन जिसको घर में चहका देखा था, बोझ लाद कर नाप रहा है ये रास्ते, बचपन जिसको घर में चहका देखा था, भोग चढ़ाया हमने अपने हाथों से, पता नहीं फिर केवल पर्दा देखा था। और ये बारिश का एक मंजर के कीचड़ कीचड़ पाँव पोंछता भटक रहा, कीचड़ कीचड़ पाँव पोंछता भटक रहा, धीरे धीरे बादल बरसा देखा था, कीचड़ कीचड़ पाँव पोंछता भटक रहा, धीरे धीरे बादल बरसा देखा था, कल ही तो खुशियों का रास्ता देखा था, उठकर जाने किसका चेहरा देखा था। एक गज़ल के कुछ अशआर और हाजिर करता हूँ कि सोचता हूँ कई महीनों से, सोचता हूँ कई महीनों से, क्या मिला गांव की ज़मीनों से, सोचता हूँ कई महीनों से, क्या मिला गांव की ज़मीनों से, बच्चे रोए नई मशीनों से, बच्चे रोए नई मशीनों से, पेट भरता नहीं पसीनों से, बच्चे रोए नई मशीनों से, पेट भरता नहीं पसीनों से, कोई इमदाद मिल नहीं सकती, कोई इमदाद मिल नहीं सकती, राह चलते तमाशबीनों से, कोई इमदाद मिल नहीं सकती, राह चलते तमाशबीनों से, कौन कहता उसे यहाँ रहबर, कौन कहता उसे यहाँ रहबर, शक्ल देखी नहीं महीनों से, कौन कहता उसे यहाँ रहबर, शक्ल देखी नहीं महीनों से। जिंदगी तो बदल नहीं सकती ख्वाब में दिख रहे दफीनों से, जिंदगी तो बदल नहीं सकती ख्वाब में दिख रहे दफीनों से। और दस हाथ दूर ही रहिए, और दस हाथ दूर ही रहिए अब मोहल्ले के इन जहीनों से, और दस हाथ दूर ही रहिए अब मोहल्ले के इन जहीनों से। सोचता हूँ कई महीनों से क्या मिला गांव की ज़मीनों से। चंद अशारिक गज़ल के, और देखिए कि हमारी यूं भी तो हसरत नहीं थी, हमारी यूं भी तो हसरत नहीं थी, उठा के सर चलें किस्मत नहीं थी, हमारी यूं भी तो हसरत नहीं थी, उठा के सर चलें किस्मत नहीं थी। जलाए रात भर आंधी में हमने, जलाए रात भर आंधी में हमने, दियों में तेल था तोहमत नहीं थी, जलाए रात भर आंधी में हमने, दियों में तेल था तोहमत नहीं थी। कि घर आया हुआ भूखा ही लौटे, कि घर आया हुआ भूखा ही लौटे, गरीबी में भी ये हालत नहीं थी, कि घर आया हुआ भूखा ही लौटे, गरीबी में भी ये हालत नहीं थी। लगाई ठीक उसने अपनी जानिब, मगर मेरी सही कीमत नहीं थी, लगाई ठीक उसने अपनी जानिब, मगर मेरी सही कीमत नहीं थी। नुमाइंदा चुना था सबसे अच्छा, नुमाइंदा चुना था सबसे अच्छा, पुराने सी मगर दहशत नहीं थी, नुमाइंदा चुना था सबसे अच्छा, पुराने सी मगर दहशत नहीं थी, हमारी यूं भी तो हसरत नहीं थी, उठा के सर चलें किस्मत नहीं थी।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, और इसमें सुन रहे थे आप डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल की ये गजलें। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शर्मीली से। इसमें आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था नीरज ने और संगीत दिया था SG बर्मन ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रखवाला से। इसमें आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन से। इसमें आवाज थी लता मंगेशकर की और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिव।

नमस्कार श्रोताओं, आज मैं हूं आपकी अपनी रेडियो मित्र छवि और आप सुन रहे हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। श्रोताओं, अक्सर जब हमें सफलता, सम्मान या समाज में पहचान मिलती है तो अनजाने में अहंकार हमारे मन में जगह बनाने लगता है। लेकिन जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जितना ऊंचा स्थान मिले उतना ही विनम्र बने रहना चाहिए। श्रोताओं, आज हम इसी सकारात्मक सोच और सुंदर विचार पर मनन करेंगे कि जीवन में विनम्रता और सादगी का महत्व इतना बड़ा क्यों माना जाता है। श्रोताओं, हमें हमेशा सामान्य बने रहने की कोशिश करना चाहिए। जब समाज में हमारी प्रतिष्ठा और पहचान होती है तो और अधिक सामान्य बनने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी हमारा कहीं अपमान हो जाए तो उससे व्यथित होने की जगह उस परिस्थिति और व्यक्ति से कुछ हमें सीखना चाहिए कि उस जगह परिस्थिति और व्यक्ति से हमें कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि मन ही मन उस स्थिति का आभार व्यक्त करें कि उस अपमान ने हमें धैर्य सिखाया।

है। इसका परिणाम है निराभिमानिता, जो ईश्वर को बहुत पसंद है। जी हाँ श्रोताओं, जो ईश्वर को बहुत पसंद है। श्रोताओं, काकभुषंडी जी ने गरुण जी से कहा था, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान ना राखही काऊ। राम जी का सहज स्वभाव ये है कि वे भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। यदि हम निराभिमानी होते हैं तो राम जी का काम ही हम कर रहे होते हैं, हम अपने आप अभिमान दूर कर रहे होते हैं। इसलिए हम अपने आप अभिमान दूर करें तो भगवान को राहत मिल जाएगी और उन्हें प्रसन्नता भी मिलेगी। अपने काम से प्रेम करना चाहिए और इसे भूल जाएं कि लोग हमें नोटिस करते हैं। हमें सहभागियों से विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, हमें सभी लोगों से विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, अनजाने लोगों से अपनापन बनाए रखना चाहिए और इससे अभिमान, जिससे अभिमान गिरता है और ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं। श्रोताओं, लीजिए आपके मनोरंजन के लिए सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ समाचारों की ओर। श्रोताओं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-233-6112 शुरू की है। आयोग का कहना है कि अब महिलाएं एक कॉल पर शिकायत, समस्या और सुझाव सीधे दर्ज करा सकेंगी, ताकि त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई हो सके। यह सेवा उन महिलाओं के लिए खास तौर पर मददगार होगी जो किसी कारण से आयोग तक नहीं आ पाती हैं। श्रोताओं, अब अगली समाचार है। ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय ने प्रयाग से हुबली तक विशेष ट्रेन शुरू की है जो शिवपुरी से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और रेलवे जोनल कमेटी के पूर्व सदस्य धैर्यवर्धन के अनुसार गाड़ी संख्या 04113 शनिवार को प्रयाग से चलकर शाम 4:30 बजे शिवपुरी पहुंचेगी। वापसी में 04114 मंगलवार को हुबली से चलेगी। ट्रेन में सामान्य स्लीपर और AC3 कोच उपलब्ध रहेंगे। श्रोताओं, अब श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब सरकार उठाएगी। श्रोताओं, मुख्यमंत्री जल कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, स्नातक, पॉलिटेक्निक और ITI की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। कलेक्टर ने श्रमिकों से योजना का लाभ लेने की अपील की है। श्रोताओं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिकाओं व पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नागरिक 15 जून 2026 तक दावे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रक्रिया के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर और कोटवारों द्वारा सुनवाई की जाएगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेन जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों

0: देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे थे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालितिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नी

0: इस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एफएम संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम अवतार से। इसमें आवाजें थी मोहम्मद अजीज की और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। और ये पत्र हमें आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लीजिए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अभी आप सुन रहे थे बेताब फिल्म से ये गीत। इसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था RD बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। और ये पत्र हमें आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से। नीचे सुनते हैं अगला फरमाइशी।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम लखन से। इसमें आवाज़ें थी मनहर उदास की और अनुराधा पोडवाल और साथियों की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और ये पत्र हमें आया है छत्रपति संभाजी नगर से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइशी।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। इसमें आवाज थी एसपी बालसुब्रमण्यम की और गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लूराम, पूरन, पुरोहित, छोटू, डुंडुन एवं समस्त परिवार। और ये पत्र हमें आया है अंबेडकर चौक खुरई से।

इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम है कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा रान सिंह मान और कुलविंदर कौर मान। और ये पत्र हमें आया है अमरगढ़ तहसील सादुल शहर से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। इसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतिका दा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कुमार भार्गव और राजेश कुशवा की आवाज में ये लोकगीत। तो लीजिए सुनते हैं ये पहला लोकगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अभी आप सुन रहे हैं सुगम संग फिल्म संग लोक रंग का ये कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे हैं राजेंद्र कुमार भार्गव के गाए ये लोकगीत। तो लीजिए सुनते हैं ये लोकगीत।
1: जमुना में हमको सताए रे जमुना।

0: अभी आप सुन रहे हैं राजेंद्र कुमार भार्गव की आवाज़ में ये लोकगीत। लीजिए सुनते हैं ये एक ज़रूरी संदेश।
1: राजू मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लीजिए आप सुनते हैं राजेश कुशवाहा की आवाज में ये

अभी आप सुन रहे थे राजेश कुशवाहा की आवाज़ में ये लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात से। इसमें आवाज़ें थीं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। और ये पत्र हमें आया है नेपाल पैलेस सागर से। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम तेरी कसम से। इसमें आवाज थी किशोर कुमार की और गीत लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे वैशाली, शैलेश ग्वाटकर, सुमित ग्वाटकर, कुमारी धनी, ध्वनि ग्वाटकर, अर्जुन ग्वाटकर, प्रणीता ग्वाटकर और सिद्धांत ग्वाटकर। और ये पत्र हमें आया है बदलापुर मुंबई और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिना से। इसमें आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद, फरीद साबरी और साथियों की। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं राष्ट्रपाल गजबजिए, राधिका गजबिए, बेबी अनिष्का तन्मय गजबिए। और ये पत्र में आया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बीवी हो तो ऐसी से। इसमें आवाज़ें थी अनुराधा पोडवाल की और मोहम्मद अजीज़ की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जाँच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार कर्मा की अध्यक्षता में जिले की कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव वन्य प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई

0: विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत भाईश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पेनाज मासानी की गाई ये गज़लें। तो लीजिए सुनते हैं ये।

अभी आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में ये गज़लें। पिनाज मसानी की इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म वीर ज़ारा से। इसमें आवाज़ थी उदित नारायण की, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम का ये गीत अभी आपने सुना फिल्म टग द फायर से। इसमें आवाज़ें थी कुमार सानू, अनुराधा पोडवाल की, और संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और गीत लिखा था समीर ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुमसे। इसमें आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल की और हरिहरन की। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म ताल से। इसमें आवाजें थीं ऋचा शर्मा, आशा भोसले और आदित्य नारायण की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर इस समय सुबह के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।

0: लगता है। जानते हैं वो कौन है? वो हैं हम खुद। अक्सर जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं या खुशी की बात करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही। तो आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम का सीधा सा सवाल ये है कि क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं? क्या आपका खुश रहना जरूरी है? क्या आप भी अपनी खुशियों को दूसरों के चक्कर में पोस्टपोन करते आए हैं? तो उठाइए फोन और लगाइए नंबर। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन करे किसने?
0: जी नहीं, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्ते।
0: जी तो अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ जी, मैं ग्राम कन्या विकास संघ बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश के ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ।
0: साहू जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बस खेती किसानी काम कर रहे थे।
0: अच्छा,
1: सोचे आज कार्यक्रम में कॉल कर लिया जाए करके, लग भी गया कॉल।
0: साहू जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना, तो आप बताइए आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: बिल्कुल, रखने के लिए सबसे ज्यादा तो ये है कि जितनी हमारी जो इच्छा है ज्यादा ये नहीं करते अपन, ज्यादा इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इच्छा दुख का होता है और जितना हो सके व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: और क्या है, खाली पीली रहोगे तो क्या तनाव उत्पन्न होता है।
0: जी,
1: तो खुश करने के लिए क्या है, जो प्राकृतिक दिनचर्या है
0: जी,
1: उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह प्रातः काल उठ जाना, अपने जो दैनिक काम है उसमें लगना, बात और सब सबके साथ मिलजुल कर रहना, यही है अपना खुश रहने का मूल मंत्र।
0: वो तो बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपने कहा कि आप ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? जब तक हम इच्छा नहीं,
1: मैडम जी, कभी कभी क्या है, इच्छा रखोगे और इच्छा पूरा ना हो
0: जी,
1: तो दुख होता है, और जब दुख होता है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के लिए हम दूसरे गलती करते हैं, तो सजा अपने आप को देते हैं, और दुख का कारण यही होता है।
0: हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन इच्छाएं रखेंगे तभी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है, और इच्छा ऐसा है कभी पूरी होने वाला ही नहीं है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, सुनिए ना,
1: अनंत होती है होने के लिए, एक इच्छा जिसकी पूरी होती है दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले लेती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने आप को खुश रखने की इच्छा की। कि अब कई बार हम जैसे अपनी पसंद की फिल्म देखने के लिए मान लीजिए बैठ जाते हैं, और बस थोड़ी देर चुपचाप बैठना है, चाय पीना है, और खुशी तो हमें मिलती है ना कि हाँ हम अपने पसंद का काम कर रहे हैं, सारी चिंताओं से दूर होके हम अपनी पसंद का काम करेंगे तो हम तो खुश होंगे, है ना? तो इसीलिए ये भी तो हमारी एक इच्छा है। मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं आज मुझे मूवी देखना है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन आप वो सोचा तो आपने, इच्छा तो की कि मुझे देखना है, तो एक ना एक दिन आप अपने लिए समय निकाल लेंगे। है ना, तो देखिए छोटी छोटी सी खुशियां
1: बहुत जरूरी है
0: जी,
1: खुश रखने के लिए क्या है, भाग दौड़ के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जो खुशियां हैं
0: बिल्कुल
1: उसको अपने आसपास सहज कर ही रखना चाहिए
0: जी। तक आप
1: कमाने के लिए इतने भागते हैं
0: जी,
1: और धन धन कहते हुए इंसान कब निधन हो जाता है पता ही नहीं चलता है
0: जी,
1: इसलिए छोटी छोटी खुश,
0: देखिए छोटी छोटी खुशियां ही बहुत बड़ी खुशियों का मूल आधार होती हैं, है ना? आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से खुश होंगे, अपने परिवार के साथ समय जब हम बिताते हैं वो भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना? जीवन साथी को, बच्चों को जब हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है।
1: हाँ सही बात है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती
0: जी,
1: है
0: जी बिल्कुल।
1: और खुशी तो क्या है, मिलजुल के बांटने का ही काम है।
0: बिल्कुल, तो जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, आप तकलीफ में होंगे तो आप किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे।
1: सही बात है,
0: है ना? तो इसीलिए जीवन मिला है, सुख दुख लगा रहता है साहू जी, लेकिन उसमें ही कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है, अपनी खुशी के लिए निकालना है, जिसमें आपको सुकून मिले, आप खुश रहें, ऐसा काम भी कीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
0: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है, अपना परिचय दीजिए।
1: राम नरेश बोल रहा हूँ मैं, खटारिया सिविल जिला राजगढ़ से।
0: नरेश जी कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं।
0: ठीक है। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना जरूरी है अपने आप

0: काम वो करता है, चाहे
1: जी
0: भले वो कृषि का करता हो या कोई भी किसी प्रशासनिक सेवा में काम करता हो, मतलब उन सब क्षेत्रों से वो खुश है तो खुश है, प्रसन्न है। और
1: बिल्कुल
0: खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग किसी की सेवा करने में प्रसन्नता रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है ऊपर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन पर जाते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले, वह प्रसन्न हो या दूसरे की सहायता करने में वो अपना प्रसन्नता खुशी देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं।
1: आप किस में खुशी देखते हैं अपनी? आपको किस बात से खुशी होती है? किस काम से खुशी होती है? अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं?
0: हम अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं,
1: बहुत बढ़िया
0: संगीत सुन लेते हैं।
1: जी।
0: हमारे जो विद्वान हैं जो, और जो वो ये कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी,
1: बिल्कुल है ही, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है आपको मानसिक शांति पहुंचाने के लिए। सुकून मिलता है उसको जब हम सुनते हैं तो।
0: ये संगीत है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे काम का बोझ होता है इनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पसंद का कोई सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं
1: जी
0: या फिर कोई गीत सुनते हैं अपनी पसंद के सिंगर का।
1: जी देखिए, खुश रहने का सबसे बड़ा फायदा तो हमारा यही है कि जब हम खुश रहते हैं तो हम तनाव फ्री हो जाते हैं, है ना? इससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो जाते हैं हम।
0: हाँ, स्वस्थ हो जाते हैं। और कई बार वो कहते हैं ना कि एक चीज से हम, जैसे कोई भी किसी भी चीज पर हम काम कर रहे हैं या किसी चीज की चिंता है, कि
1: जी
0: जिससे थोड़ा विराम ले लिया जाए,
1: जी
0: थोड़ा हमें थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए और फिर से नई एनर्जी के साथ में
1: जी
0: और फिर उस चीज को और बारीकी से देखा जाए,
1: जी
0: तो हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्योंकि जब लगातार हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है किसी काम का, तो थोड़ा बुद्धि जो है काम करना थोड़ा कम कर देती है, तो हमें खुश होने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए हमें एनर्जी आ जाए ताकि हम
1: बिल्कुल।
0: उस चीज को बड़े आराम से उस चीज को देखकर करें। तो
1: और ये छोटी छोटी सी चीजें ही, हमारी हॉबी, म्यूजिक या वॉक करना भी, ये हमें तुरंत खुशी दे देते हैं।
0: या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई परिजन है
1: जी
0: या हमारी कोई बहन है, बेटी है, मित्र है, दोस्त है, हम उससे बातचीत करने से प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो 2 मिनट उनसे बातें करें।
1: जी आपको बात बताना बोलना चाहूंगी नरेश जी, कि जब
0: जी
1: जैसे अभी आपने परिवार या कोई साथी की बात की कि उनसे हम बात कर सकते हैं, तो इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती बनती
0: जी
1: है ना? कोई भी हमारे परिवार का सदस्य, अगर हम उससे खुलकर बात करते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हमें खुशी तो मिलती ही है। तो एक पंथ दो काज वाली ये बात हो जाती है।
0: लेकिन आज के जमाने में, जिस आधुनिक युग में,
1: जी
0: लोग इस तरह का काम बहुत ही कम कर पाते हैं, तो काम में इतनी व्यस्तता होती है, या फिर कई बार फोन लगाना या संपर्क करना अपने दूर के रिश्तेदारों से, तो वो कोई काम होता है तभी इस चीज के लिए संपर्क किया जाता है, ये देखा गया है।
1: जी ये तो व्यस्तताएं बढ़ गई हैं ना, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। हमारे चाहने वाले या हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी दोस्त है, अगर वो हमें नहीं कर पा रहा तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें बात करनी होगी। और एक बार
0: जी
1: अगर ये सिलसिला हम चालू कर देंगे तो आप देखिएगा, दोबारा उनका कॉल, उनसे बात हमारी ज़रूर होगी।
0: जी और एक बात आपने खुशी की बात कही, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मित्र या दोस्त हमसे नाराज है, और
1: जी
0: यदि उसका पसंद का कोई हम चीज ले जा सकते हैं, चाहे मिठाई हो सकती है, चाहे कुछ खाने की चीज हो सकती है, यदि वो नाराज है और वो चीज उसको दी जाए और बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाए, हो सकता है वो उस चीज को खाकर थोड़ा नाराजगी भुला
1: दूर
0: दे
1: हो
0: और फिर
1: जाएगी।
0: से खुश हो
1: बिल्कुल,
0: जाए।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर आप जानते हैं उनकी पसंद क्या है और आपने उनकी पसंद की चीज़ या कुछ भी आप मिलने ही चले गए, वो खुश हो जाएंगे और नाराजगी सारी एक तरफ।
0: हाँ, हो जाएगी, और उस भी से हम सॉरी भी कह सकते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: वो सॉरी
1: बिल्कुल
0: किसी आपका काम करेगा और वो व्यक्ति आपको माफ कर
1: नरेश जी
0: देगा।
1: बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है, हमारे सारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो जानेंगे कि देखिए हाँ ये भी एक पहल है जो हमें अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छी बात आपने कही है नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने फ़ोन किया, इतनी अच्छी बात की, उसके लिए धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्ते,
0: जी।
1: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी आदरणीय श्रोता होने के नाते आपका भी स्वागत करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन से हमारी बात हो रही है हम जान सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश का हार बात कर रहा हूँ जी।
1: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
0: थोड़ी सी हंसी मैम इसलिए आ गई, मुझे आपने बोला कि बहुत अच्छे श्रोता
1: मैं
0: हैं
1: है
0: तो
1: ही
0: हो सकता है हो मैं हूँ।
1: हो सकता है नहीं, आप हैं। आप किसी भी बात पर बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं, खुलकर बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है।
0: मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि मैं ज्यादातर फोन इसी में लगाता हूँ जिसमें विचार रख सकूँ अपने।
1: तो आज विचार रखिए। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अपने आप को खुश रखना जरूरी है, और आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं ये भी हमें बताइए।
0: देखिए मैम जी, दिशा बहुत अनुकूल है, सभी से मेरा अनुरोध है, और मैं भी अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो रेडियो सुनता हूँ, और ग्राहक बंधु जो आते हैं दुकान पर मेरी मेरी चाय नाश्ते की दुकान है तो
1: हाँ।
0: उनके माध्यम से खुश हो लेता हूँ। रेडियो सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं।
1: बढ़िया,
0: एक माध्यम होता है मैम जी खुश कहीं ना कहीं अपने आप को रखने का। तो मेरा आग्रह सभी से, सभी श्रोताओं से है कि अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा काम करते रहिए जिसमें कि आप खुश रहें और आपको देख कर ही दूसरे भी खुश हो जाए। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैम जी, मैं
1: जी बताइए।
0: यदि नन्ना सा बच्चा होता है, यदि मुस्कुराता है वो दूर से, तो आपको जरूर मुस्कुराहट आएगी और आप भी हंसेंगे थोड़ा बहुत।
1: बिल्कुल, आपकी बात सुन के हमें वो चित्र दिख रहा है मुस्कुराते हुए बच्चे का, और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट ही है।
0: तो मैम जी वो नन्हे बच्चे की अपेक्षा यदि हम सामान्य व्यक्ति जो समझदार है सचमुच में
1: जी,
0: और किसी के मुस्कुराने से हो सकता है वो नाराज हो जाए, क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, ऐसी बात है। तो मेरी पहलू दोनों तरफ है मैम जी, नन्हे बच्चे को देखकर आप वो मुस्कुराता है, यदि आपको नहीं भी देख रहा है तो आपको मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसी आ जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मुस्कुराता है जो समझदार है, यदि आपको देखकर मुस्कुराता है तो थोड़ा बहुत तो मैं एक कह सकते सवाल उठता कि मुझे देखकर ये क्यों
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, इसमें यही बात है ना कि सोच का फर्क पड़ता है। अगर नकारात्मक सोच होगी तो ये देखकर मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच है या किसी ने आपको देख के मुस्कुराया तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा।
0: और अंततः यह कहूंगा कि अधिकतर काम यदि हम मुस्कुरा कर करेंगे तो वो काम में भी आसानी होगी और सामने वाले का मन भी अच्छा रहेगा। तो बस यही कहेंगे अपने आप को मुस्कुराने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाइए जिससे कि पेड़ पौधे जीव जंतु जल वायु अग्नि आकाश सभी मुस्कुराते रहे आपको देख कर कि ये व्यक्ति आ गया, मेरा संरक्षण भी होगा और मैं इसके साथ संरक्षित भी हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, खुद की देखभाल करना, खुद को खुश रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी भावनाओं की इज्जत इसमें हम करते हैं। अगर हम थके होते हैं तो कभी हम आराम करते हैं, कभी कभी बेवजह ही तनाव से बचने के लिए जैसे आपने कहा हम संगीत सुनते हैं, है ना, म्यूजिक आपका रेडियो आपके साथ रहता है, चलता रहता है। हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे।
0: जी जी, कुछ ना कुछ वजह तो हमें खोजनी चाहिए मैम जी अपने आप को खुश रखने के लिए, चाहे रेडियो हो या अन्य बात है।
1: जी, सीधा हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो ना हम अपने आप को खुश रखते हैं ना परिवार को खुश रख पाते हैं।
0: जी जी जी
1: जी,
0: और ज्यादातर मैं तो यही कहूँगा और यही कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादातर मुस्कुरा कर बात करें।
1: देखिए, अभी आपके मुस्कुराहट के साथ हंसी भी आई है, इसका मतलब आप खुश हैं। आप खुश हैं कि आपका फोन लगा, आपने हमसे बात
0: भले,
1: की
0: भले मैम जी भले बनावटी मुस्कुराहट हो लेकिन मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराहट या खुश हो सके।
1: कमलेश जी, बनावटी मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, मुस्कुराइए तो दिल से मुस्कुराइए। देखिए, कहीं ना कहीं वो बनावटी मुस्कुराहट या खुशी समझ में आ जाती है कि ये देख के हमें खुश नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये हंस रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं कि मुझसे मिलके उनको अच्छा लगा।
0: आप हमें खुश रखने के लिए, सभी श्रोताओं को खुश रखने के लिए यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके माध्यम से रेडियो पर आपकी भी आ जाए तो हम लोग सचमुच में खुश हो जाएंगे, भले ना दिख रही हो लेकिन मुस्कुराहट आपकी
1: नहीं,
0: आनी चाहिए।
1: हमारी तो आ ही गई, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि सुनने वाले सभी श्रोता अभी मुस्कुरा रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो हमें अपने को भी खुश रखना है, दूसरों की खुशी तो मायने रखती है लेकिन हमें हमारी खुशी का भी ध्यान रखना है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम जी आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते हैं और प्रसारित करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।

0: नमस्कार बहन जी।
1: नमस्ते, स्वागत है आपका।
0: जी बहन जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
1: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, और आप कौन बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
0: ये मैं बोल रहा हूँ ग्राम बहेरी, जिला बांदा, चित्रकूट धाम के से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
1: दिनकर सिंह जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए
0: जी। और आपसे ये बहुत जल्दी दोबारा जो है बात होके हो रही है, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दीदी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको खुशी मिल रही है।
0: आपका तरीका जो है वो सबसे कुछ हटके है दीदी जी, जो है
1: धन्यवाद।
0: मैं विषय वस्तु जानना चाहूंगा।
1: देखिए, आपने खुशी हमें दी, और आज बात भी खुशी की ही है कि कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना। क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
0: जी बिल्कुल, जो है प्रयास तो यही करते हैं। जब कभी किसी टेंशन में होते हैं तो कहीं बाहर घूमने जाते हैं या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, तो अपने आप को खुश रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह अगर हम आउट ऑफ या रॉन्ग साइड में पहुंच गए हैं और हमारा मन दुखी है किसी कारणवश, तो उसको हम फिर पुनः पटरी पे लाने के लिए कुछ जरूर नए नए तरीके खोजते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।
1: बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दिनकर जी कि हम अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि चाहते हुए भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। हम तनाव में रहते हैं, खुशी डिजर्व कर रहे हैं कि हाँ हमें खुश होना है, लेकिन हम अपनी खुशी का काम नहीं कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी दीदी जी आदमी इतनी व्यस्तता के कारण और कभी इतना टेंडम टेंशन में होता है कि उसकी नींद तक गायब हो जाती है
1: जी।
0: और उसे पाने के लिए अगर आपको एक मैं थोड़ी कहावत बताऊंगा
1: जी। बताइए
0: कि अगर अपने साथ आ जाए, अगर अपने साथ आ जाए तो दुख हो जाता है आधा, और जीवन में अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन में नहीं आती कोई बाधा।
1: वाह क्या बात है।
0: तो इस तरह से अपने यानी अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनके पास हम जाएंगे तो हमारे सिचुएशन बताएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपकी जो नींद गायब हो गई है वो पुनः आपकी नींद आ जाएगी और आपके जिंदगी में खुशियों के पल फिर आ जाएंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
0: वही दीदी जी, मैं ये जो अभी यंगस्टर के बात नहीं, लेकिन जो जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ती है तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, और जब वो कर नहीं पाता तो टेंशनाइज होता है और उसकी खुशियां गायब हो जाती हैं। इसलिए हंसना भी चाहिए और बीच में जाके कुछ सामाजिक कार्यक्रम में अपना हिस्सा भी बताना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। हमारा खुश रहना जानते हैं दिनकर जी कैसा है, जैसे कि जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती है, उसको हमें चार्जिंग में लगाना ही पड़ता है। वैसे ही हम भी हैं कि हमारी खुशियां भी हमारा चार्जर है, जब तक हम खुद चार्ज नहीं होंगे हम दूसरों को रोशनी या खुश कैसे रख पाएंगे, रोशनी दे ही नहीं पाएंगे उन्हें।
0: बहुत खूब दीदी जी, आपकी इससे जो है जो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए होंगे तो जरूर डिस्चार्ज हुए होंगे, जो है जो आपने ये बात कही कि बैटरी को डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज किया जाता है, तो वही चीज आपकी ये बात सुनकर जो जितने लोग सुनेंगे या सुन रहे होंगे वो सब जो है ये इससे रिचार्ज हो जाएंगे।
1: धन्यवाद आपका,
0: और वो ऊर्जावान भी हो जाएंगे। एक मैं अंत में एक जो है कहावत के साथ विदा लूंगा
1: जी।
0: जो ना कभी थकता है, ना कभी रुकता है, ना कभी झुकता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे और अपनी खुशी का अब एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल, और प्रेमदास बाबा जी आपकी और मेरी बात सुन के जो है गदगद हो गए हैं दीदी जी।
1: उनको बोलिए वो भी ऐसे ही गदगद रहें और हमेशा खुश रहें
0: जी। 80 वर्ष की उम्र में वो खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं, और उन्हीं के साथ आपका बजाया हुए गीत हम सुन रहे हैं। नमस्कार,
1: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं अनुभा बोल रही हूँ दिल्ली से।
0: अनुभा जी, बहुत दूर से आपने हमें कॉल लगाया है।
1: जी हाँ, एक्चुअली मैं सुनती रहती हूँ हमेशा भोपाल आकाशवाणी से आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: सुनना।
0: बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि आप उतने दूर से सुनती रहती हैं। अच्छा, आज हमारा विषय है कार्यक्रम में कि क्या आप अपने आप को खुश रखती हैं? आप अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है?
1: खुश रहना एक्चुअली में जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है। हम खुश रहते हैं तो हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में सारे सदस्य आपसे खुश रहें, तो सबसे पहले आपको खुद खुश होना होगा, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे।
0: ये
1: तो
0: बहुत
1: खुश
0: बड़ी
1: होने
0: बात
1: के
0: आपने
1: लिए,
0: कही है।
1: हाँ जी, तो खुश होने के लिए किसी बड़े कारण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। एक अच्छे और सफल जीवन की कुंजी मेरे हिसाब से तो खुश रहना ही है।
0: जी, अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जब आप देखिए, टेंशन हर किसी के जीवन में आती है, थोड़ी बहुत आती ही है, तो अगर आप बहुत तनाव में होती हैं, तब आप अपने आप को क्या वो खुशी दे पाती हैं जो आप डिजर्व करती हैं?
1: एक्चुअली समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। मैं उस समय में बस एक चीज ये याद रखती हूँ कि जैसे अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता, ऐसे ये तनाव, ये बुरा समय भी जल्दी गुजर जाएगा। तो हमें उसका इतना ज्यादा टेंशन ना लेके उन समस्याओं को सुलझाने की तरफ, उस दिशा में काम करना चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रख के, सकारात्मक सोच के साथ।
0: बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही है अनुभा जी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको तुरंत खुशी देती है? कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वक्त निकाल पाती हैं?
1: मुझे मेरे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है, और जब भी थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ ऐसा है, या जैसे ही समय मिला वैसे ही मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी मुस्कान देख के आपके दोस्त भी खुश हो जाते होंगे कि हाँ, आज मेरी दोस्त का फोन आ गया, उससे बात हो गई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनुभा जी। ऐसे ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। मैं भोपाल से बोल रही हूँ और ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते हैं।
0: आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। रूपा जी, आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? आज का हमारा विषय यही है कि कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी जी बिल्कुल, ये विषय बहुत ही अच्छा है। खुद को खुश रखना मतलब सबको खुश रखना। मैं अपने को खुश रखने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, गाने सुनती हूँ, और गाने से जो भावनाएं आती है और आपके रेडियो के माध्यम से जो गाने सुनने को मिलते हैं, दिल वैसे ही खुश हो जाता है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप रेडियो भी सुनती हैं, अपने शौक को भी पूरा करती हैं।
1: जितना खुश आप रहेंगे उतना ही आप सबको खुश रख पाएंगे। पहले तो अपने अंतर मन को खुश रखना जरूरी है। तो यही इच्छा हमारी है और सबकी वही होनी चाहिए कि अपने को पहले खुश करें, दूसरों को खुश करने से पहले।
0: जी देखिए, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जब हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उसमें एक सेफ्टी अनाउंसमेंट आती है कि जब फ्लाइट में इमरजेंसी होती है तो पहले आप हमेशा अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाएं, उसके बाद दूसरों की मदद करें। तो
1: बिल्कुल
0: ज़िंदगी के लिए भी यही नियम लागू है कि जब तक आप खुद मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और को नहीं संभाल सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हंसता चेहरा कोई अगला भी देखता है, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, वो खुद भी मुस्कुराता है।
0: जी
1: बस यही भावनाओं से सबके दिलों में हम खुशी भर सके, यही जिंदगी का मूल है।
0: थैंक यू रूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। और आपकी आवाज़ और आपकी बात सुन के लगता है कि आप भी ऐसी ही हंसमुख इंसान हैं, तभी आपका चेहरा देख के लोग भी खुश हो जाते होंगे।
1: बिल्कुल, यही मेरी इतनी इच्छा है कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूं और सबको खुश करती चलूं।
0: ईश्वर आपकी इस इच्छा को हमेशा पूरा करे। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए और खुशियाँ बांटती रहिए। आपने
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम
1: सर।
0: में फोन किया, हमसे बात की, इसके लिए

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का 5वां और आखिरी दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में आज सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 कुशाभा ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं शाम 5:00 वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा तथा अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:00 को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नदिया के पार का एक गीत। आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अगले गाने को पसंद किया है शिवलोक ग्रीन खजूरी कला से लिखने वाले हैं तुलसी राम पाटंकर घनश्याम जाट त्रिवेणी प्रसाद निखिल वर्मा मुकेश

सोनी, राहुल निकुंभ, परमिंदर तिवारी, खालिद खान, राजेश पंडित, विष्णु पांडे, रमेश्वर स्वरूप और राजा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इन्होंने गाना पसंद किया है फिल्म हम का। आवाज़ें हैं शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शरीफ बदमाश से। आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आरटी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हिनोतिया जागीर से, लिखने वाले हैं रामदास बेलदार, रोहित मेकानिक और राहुल ठाकुर। साथ में इस गाने को पसंद किया है अंशु छोटे उस्ताद ने, और गुड्डा यादव और राजेंद्र ठाकुर इन्होंने ये फरमाइश भेजी है हिनोतिया जागीर भोपाल से, लिखने वाले हैं। अगला पत्र जो है हमारे पास में ये है, इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं राजा रामनगर देवास से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, रूपा खड़ी देवास से, हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, और जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालिग्राम और दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनिए ये गीत।

0: क्या तू नहीं जानता? सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा है, दक्षिण में कहीं ऐसा नियम है कि निम्न जाति के लोग दलितों से 33 फुट, उच्च जाति से 66 फुट और ब्राह्मणों से 99 फुट की दूरी पर खड़े हों। अरे किसी स्थान पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राजपूतों जैसी पोशाक लेने पर मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई थी।
1: अरे ये सब बीती बातें हैं शास्त्री जी, आज हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं। सरकार ने इस कानून को लागू भी करा दिया है। आज के युग में जातिगत भेदभाव के लिए सजा का प्रावधान है।
2: यशवंत ठीक कह रहा है शास्त्री जी।
0: तुम लोग किस काम से आए हो यह मैं खूब जानता हूँ।
3: तुम लोग अब मेरी सलाह लेने आए हो? 7 दिन बीत गए,
4: अब मैं यूनियन के समझौता पत्र को यूं ही नहीं नकार सकता।
0: यही सोच रहे हो ना तुम? मैं यूनियन के समझौता पत्र को बिल्कुल नकार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी।
1: कौन सी बात शास्त्री जी?
0: जिस समझौते की कंपनी दुहाई दे रही है वो समझौता जबरदस्ती हमसे करवाया गया है, इस बात का मैं सबूत दे सकता हूँ।
2: लेकिन शास्त्री जी हमारे पास फंड नहीं है, मुख्यालय की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा, दिहाड़ी मजदूरों के बीच कई लोग बीमार भी हैं, अगर वे एक एक करके मरने लगे तो।
0: सुनो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। फंड का रुपया खत्म भी हो गया तो कंपनी की स्टील, रॉड, सीमेंट, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, टिम्बर, इन सब के ऊपर कूद पड़ना होगा। उन्हें ले जाकर बेच दो और फंड की व्यवस्था करो।
2: क्या
0: इंजीनियर को डराओ? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लीगल फाइट करा दूंगा, तुम लोग हारोगे नहीं।
1: लेकिन कंपनी ने ऐसे पुराने सामानों के लिए कोटेशन मांगा है।
3: तो क्या हुआ, क्या हुआ?
4: अरे कोटेशन देने वाले व्यापारी जब कोटेशन का मुआयना करने आएंगे तो तुम लोगों ने भगा देना,
0: पीट पीट कर उनका सर तोड़ देना, सामान को बेच देना और पैसे को दिहाड़ी मजदूरों में बांट देना।
1: लेकिन शास्त्री जी।
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ध्यान रहे, मेरी भी कुछ निश्चित कीमत है, ये मेरे एजेंटों ने बता दिया होगा, तभी मैं मजदूरों के बीच आ सकता हूं।
2: क्या आप भी?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल प्रवास पर हैं। श्री प्रधान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे और आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस

0: महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा और अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज के समय में महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं,

मिलता है। इसमें हस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू सजावट की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, कलाकृतियां तथा अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं। यह पहल महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान करती है। बहनों, शी मार्ट पहल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना, महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को पहचान दिलाना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराना, समाज में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। शी मार्ट पहल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इससे उनके परिवार की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है। कई महिलाएं जो अपने हुनर को केवल घर तक सीमित रखती थी, अब बड़े स्तर पर व्यापार कर पा रही हैं। बहनों, शी मार्ट से महिलाओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नए कौशल सीखने के अवसर मिलते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है और छोटे उद्योगों को पहचान मिलती है। शी मार्ट पहल का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश के अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचता है। यह पहल महिलाओं को प्रेरित करती है, वे अपने सपनों को पूरा करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बहनों, यह कहा जा सकता है कि शी मार्ट पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने का कार्य करती है। समाज और देश के विकास के लिए ऐसी पहलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, तब उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। इसी प्रेरणा को दर्शाता है फिल्म संजू का प्रसिद्ध गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे फिल्म संजू से लिया गया था और जिसे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया था।
1: शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। तो बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर ज्योति सिंह बघेल, जो योग के क्षेत्र में बहुत ही सालों से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी कल्पना जी, नमस्कार
1: जी। अच्छा ज्योति जी, महिलाओं के स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है?
2: जी कल्पना जी, बिल्कुल मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी आपको। महिलाओं के लिए तो योगा है ही, ये तो सभी वर्ग के लिए, पर जैसे आपका सवाल महिलाओं के लिए है,
1: जी
2: बिल्कुल, ये महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से आपका हृदय, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी में जो जोड़ है, इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बॉडी में जो हार्मोनल का जो बैलेंस है, वो एक बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी में देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बढ़ती उम्र में महिलाओं को कौन कौन से योगासन करने चाहिए?
2: जी बढ़ती उम्र में महिलाओं को जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन हो गया, त्रिकोण हो गया, वीरभद्र, ये सारे आसन जो है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए
1: सहायक होते हैं। अच्छा ज्योति जी, क्या योग तनाव और चिंता को भी कम करता है?
2: जी बिल्कुल करता है। योग में आप प्राणायाम ने आपने सुना होगा, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, और ये विशेषकर जो है आपका मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, मन की शांति के लिए आपको मदद करते हैं, आपका दिमाग में जो तनाव पैदा होता है, अलग अलग जो बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को आपको मिलता है, उसको घटाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा ज्योति जी, योग है तो महिलाओं की जैसे बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों के लिए भी लाभदायक होता है क्या?
2: जी बिल्कुल, ये जब आप रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज या योगा करते हैं, तो आपकी जो बॉडी की डेंसिटी है उसको बनाए रखने में मदद करता है। आपकी मांसपेशी और उसके आसपास के जितने भी संयोजी ऊतकों को मजबूत बनाता है, दबाव कम होता है और दर्द की तीव्रता घटती है।
1: अच्छा, महिलाओं को जैसे कि महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं घर में भी रहती, तो कितनी देर इनको योग करना चाहिए?
2: जी वैसे तो अगर आप रोज कर रहे हैं तो एक आपको 30 से 45 मिनट तो आराम से आप कर सकते हैं, बट जैसा आजकल का बिजी शेड्यूल चल रहा है, एक छोटे समय से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 4 से 5 बार नियमित रूप में, या हफ्ते में आप दिन बना लें कि मुझे 3 से 4 दिन करना है या 2 दिन रेस्ट करना है, और ऐसा कर करके आप इसको हफ्ते में पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा ज्योति जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, जैसे कि महिलाओं की बढ़ती उम्र से संबंधित है ये, मेनोपॉज क्या होता है?
2: जी बिल्कुल, मेनोपॉज ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कल्पना जी, बहुत से लोग इससे मतलब परेशान हो जाते हैं, जबकि एक प्राकृतिक जीवन चरण, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वैसे मेनोपॉज भी होता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। स्थायी रूप से मतलब क्या होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये बंद हो जाती है, आमतौर पर ये 45 से 55 वर्ष की आयु में देखा जाता है, पर क्योंकि आज का जैसे इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खाने का और जो अनहाइजीनिक जो हैबिट लोग की फॉलो होने लगी है महिलाओं की, जी इनसे अभी अर्ली मेनोपॉज देखने को मिलने लगा है।
1: अच्छा ये ज्योति जी, क्या योग जो है मेनोपॉज की समस्याओं को कम भी करता है?
2: मेनोपॉज की समस्याएं बिल्कुल कम होती हैं। अब इसमें ये जरूर है कि औरतों को जानना चाहिए कि मेनोपॉज की समस्याएं हैं क्या, जो कि होती नहीं है, और औरतें डर के मारे इसको बना लेती हैं, क्योंकि औरतें डर जाती हैं कि नेचुरल प्रोसेस है जिसको वो नेचुरल नहीं समझती हैं, और जिस वजह से उनके अंदर डर पैदा होता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी वैसे ढाल लेती है। नींद में कमी होना, थकान लगना, मूड स्विंग होना, चिंता, डिप्रेशन, ये सब जो है सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय पे, और इनको योगा जो है कम करने में मदद करता है।
1: अच्छा जैसे कि ये मेनोपॉज के दौरान कौन कौन से योगासन लाभकारी हैं?
2: जी मेनोपॉज के समय पे आपको वो आसन करने चाहिए जो रिलैक्स दे सके आपकी बॉडी को, जैसे कि बाल आसन हो गया, शवासन हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, सेतु बंधासना हो गया, ध्यान श्वास की तकनीकें होगी, जैसे कि अनुलोम विलोम का आपने बहुत नाम सुना होगा,
1: हाँ
2: नियंत्रित करेंगे तो बिल्कुल आपको मददगारी साबित होगा। और अगर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है ज्यादा ही डीप में है तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से भी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा ज्योति जी, मैं ये एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, आप मेनोपॉज के समय महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
2: जी, मेरा संदेश मेनोपॉज के समय यही है कि मेनोपॉज एक प्राकृतिक जीवन चरण है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप नियमित योग करें, एक संतुलित आहार खाएं और पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोच रखें, व्यायाम को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी रोज की जीवन शैली में शामिल करें, आपकी लाइफ स्टाइल को तो मेंटेन करेगा ही, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखेगा। बहुत सी औरतें डर जाती हैं, उनकी अपनी पे डिपेंडेंसी, अपने पे जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, तो उसको मेंटेन करेगा, आपकी फिजिकल कंडीशन उसको मेंटेन करेगा।
1: अच्छा ज्योति जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी की बातें हमको पता चली, और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें करने के लिए।
2: जी बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी।
0: बहनों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी ही महान वैज्ञानिकों में डॉक्टर कमला सोहानी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारत की पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और भेदभाव का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। डॉक्टर कमला सोहानी का जन्म 18 जून 1912 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कमला भागवत सोहनी था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थी। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि थी। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। जब कमला सोहनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रवेश लेने का प्रयास किया, तब वहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला सोहनी ने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ निश्चय और प्रतिभा को देखकर अंततः उन्हें प्रवेश दे दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ पढ़ने की अनुमति मिली। उन्हें पुरुष छात्रों से अलग रहना पड़ता था और अपनी योग्यता बार बार सिद्ध करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के समान सफल हो सकती हैं। डॉक्टर कमला सोहनी ने जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने पौधों, दालों और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शोध नीरा नामक पेय पदार्थ पर था। नीरा ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पेय है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह पेय विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उनके शोध कार्यों से देश में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी। बहनों, भारत की वे पहली महिला बायोकेमिस्ट बनी। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली, पोषण विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सम्मान प्राप्त किया। बहनों, कमला सोहनी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी लिंग का मोहताज नहीं होती। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी सफलता ने समाज की उस सोच को बदलने में मदद की जिसमें महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। आज अनेक लड़कियां विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिनके लिए कमला सोहनी प्रेरणा का स्रोत हैं। बहनों, डॉक्टर कमला सोहनी का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा किया और भारत का नाम गौरवान्वित किया। उनके योगदान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी प्रेरणा दी। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहनों, हर इंसान के दिल में कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ अनकही भावनाएं होती हैं। जब वही भावनाएं संगीत बनकर सामने आती हैं, तो दिल सीधे उनसे जुड़ जाता है। एक ऐसा ही प्यारा और भावनाओं से भरा गीत है, दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आश का पंछी से लिया गया है और जिसे सुबीर सेन ने गाया।

0: छू लूंगा आसमां को बढ़कर, कहीं तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: बहनों, अभी हमने सुना गीत दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आस का पंछी से लिया गया और जिसे सुबीर सेन ने गाया था। बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी लेकर आता है, जो हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस मौसम में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी त्वचा स्वस्थ, साफ और चमकदार बनी रहे। सबसे पहले गर्मी में धूप से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में निकलने से त्वचा झुलस सकती है और सनबर्न की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर जाते समय टोपी या सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे त्वचा को हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है। गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए दिन में 2 बार चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहिए और साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्के और प्राकृतिक फेस वॉश का उपयोग करना बेहतर होता है। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है। बहनों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखा जा सकता है। यही आदतें अपनाकर हम अपनी त्वचा को गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत लोक भजन से।

अभी आपने सुना बधाई गीत, आवाज थी सुषमा शुक्ला की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आज हम इसमें आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुषमा शुक्ला का गाया बेलान है गीत।

सुषमा शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की इस रचना से, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। अब सुनिए मीरा की रचना, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम के अंदर अंत में सुनवा रहे हैं गीत रचना डॉक्टर विद्यानाथ वैद्य की।

0: संगीता मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाला सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान सुनना न भूलिए प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे, जिसमें आप सुन सकते हैं सिंधी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर वार्ता, भेंट वार्ता, कविता, कहानियां और भी बहुत कुछ सिंधी के मधुर गीत संगीत के साथ। तो सुनना न भूलिए हमारा ये कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सिंधियत जी सुरहान प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे।

कार्यक्रम की शुरुआत प्यासा सावन फिल्म के गीत से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का गीत, शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है, शब्द रचना और संगीत रविंद्र जैन का।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: इस ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी।
2: मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूँ, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
0: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर

बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मॉनसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुदवास, सोहतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन उप आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय

0: परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, कार्यक्रम की पहली पसंद हम ले रहे हैं फिल्म लूटमार से, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत राजेश रोशन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से, कोटवा नारायणपुर बाबा पटरी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सब की पसंद का फिल्म लूटमार का ये गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान पोतरा, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सिंधोली जीरगंज बरेली से जिशान वारसी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सब सुनना चाहते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुना प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है फिल्म वारंट से, आवाज़ किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिला गंज आलोड जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रयाश और ऋषि वर्मा। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है धमनी किरवई से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं फिल्म वारंट का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वारंट फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है महबूबा फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी और संगीत राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं दौलत बाग मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, नईमा बैग, कासिमा अली, नदीम अली। औरंगाबाद से राजेश साबले, पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म महबूबा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

देवबर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी धुनी गवांडकर, परी सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा की, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी शिवमाली की। तो आइए सुनते हैं। एक पसंद और मिली है इसकी मयंक कृष्ण रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आर डी बर्मन का है, और इसे आवाज दी है भूपिंदर और सुरेश वाटकर ने।

रविंद्र और सुरेश वाडकर के गाए फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश

0: पेशे पेशे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू होगा। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए US प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये दोनों कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन सकेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की 2 देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। इंदौर में आयोजित 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के उच्च स्तरीय कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने शहर के मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में फलदार पौधों का रोपण किया। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार को शुरू होगा। मुंबई में 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुत

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे योग के विषय में, विज्ञान धारा योजना के विषय में, आल्हा गायन के बारे में और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योगाभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ये पढ़ाई और करियर के दबाव को कम करता है, ऊर्जा का सही उपयोग सिखाता है और जीवन में अनुशासन और संतुलन लाता है। दोस्तों, हमारे समग्र विकास के लिए योग के कई लाभ हैं। हम युवाओं को कभी पढ़ाई, कभी करियर और भविष्य की चिंताएं होती हैं। ऐसे में प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं और एंग्जाइटी

यानी चिंता को कम करते हैं। नियमित योगाभ्यास से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और याददाश्त बढ़ती है। आधुनिक जीवन शैली में घंटों एक ही जगह बैठकर पढ़ने या काम करने से कमर और गर्दन में दर्द की समस्या आम हो गई है। ऐसे में योग शरीर को लचीला और पोस्चर को सही रखता है। दोस्तों, यौगिक क्रियाएं शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं और पाचन क्रिया एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखती हैं। इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग से भावनात्मक संतुलन में भी मदद मिलती है। युवावस्था में हार्मोनल बदलाव और रिश्तों के दबाव से मन विचलित हो सकता है। ऐसे में योग सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, रोजाना फिट और सेहतमंद रहने के लिए योग में आसन और प्राणायाम का संतुलन बनाना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अब सुनते हैं।

0: दोस्तों, अब हम योग के फायदे के विषय पर आकाश द्विवेदी की वार्ता सुनते हैं।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इसलिए कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहना, कोडिंग करना और काम के दबाव को जूझना मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, जो कि है युवाओं के लिए योग और मानसिक स्वास्थ्य। तो आज हम जानेंगे कैसे हमारे इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के बीच योग हमारे काम और दैनिक जीवन को बेहतर बना सकता है। एक इंजीनियर होने के नाते दिन खत्म होते होते पीठ का दर्द और मानसिक थकावट मेरी भी एक समस्या रही है, लेकिन जब से मैंने योग को अपनाया, इसे करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही बदलाव महसूस हुआ खुद में। अब जब भी काम के दौरान मुझे लगता है कि मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, तो मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपना काम रोककर बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने का ना, वो जो एक ठहराव होता है, वो आपके दिमाग को भीतर से पूरी तरह फ्रेश कर देता है और आपके काम को फोकस बढ़ा देता है। तो मैं बोलूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह 5 मिनट का कोई भी एक आसन, जैसे कि भुजंग आसन, आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। और मानसिक शांति के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जो मैंने खुद करके देखा है और इसके प्रभाव भी देखे हैं। जब आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियों के लिए इतना वक्त निकालते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।

दोस्तों, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है विज्ञान धारा योजना। ये वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसके कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे क्षमता निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानवीय क्षमता को बढ़ाना, मौलिक अनुसंधान, अनुवांशिक अनुसंधान और सहयोगात्मक अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये योजना भारतीय शोधकर्ताओं और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सुगम बनाया जा सकता है और भारत को एक वैश्विक वैज्ञानिक भागीदार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान धारा योजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एक एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाकर इसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, दोहराव को कम करना और देश के वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत आवारापन फिल्म से मुस्तफा जाहिद की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे आल्हा गायन के विषय में। आल्हा एक ऐतिहासिक वीर पुरुष के जीवन से संबंधित वीर रस प्रधान लोक गाथा है। आल्हा गायन का प्रचलन पावस ऋतु में है। बुंदेलखंड में आषाढ़ के महीने से लेकर सावन के कजरी त्योहार तक गांव-गांव में आल्हा गाया जाता है। गांव में किसान लोग चौपाल चबूतरों पर एकत्रित होकर ढोलक की थाप पर मधुर परंतु ओजस्वी और बुलंद सुरों में आल्हा गाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति से बुंदेलखंड के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन उन्होंने लोकगीत आल्हा गायन के माध्यम से आल्हा उदल के बारे में जरूर सुना होगा। आल्हा गायन बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथाओं में से एक है। मौखिक परंपरा में इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये केवल बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि राजस्थान, बेसवाड़ा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कन्नौज और पश्चिमी बिहार जैसे कई स्थानों पर भी गाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस का सुंदर समावेश मिलता है। वीर रस इसमें प्रधान रस है। दोस्तों, इस गाथा में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी स्थितियों का समाहार मिलता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत और करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन। भूल भुलैया फिल्म से श्रेया घोषाल और एमजी कुमार की

మగసని ధని సగమా మగసని ధని సగ మగసని

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।

ए आर रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल, कार्तिक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गजनी से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शाहिद माल्या और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म जब हैरी मेट सेजल से।

प्रीतम का संगीत अरशाद कामिल के लिखे बोल, शाहिद माल्या और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जबहरी मिट्टी जल से। और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में, फिल्म का नाम है लंदन ड्रीम्स।

शंकर एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल शंकर महादेवन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लंदन ड्रीम से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और बादशाह साथी जॉनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज में फिल्म ए दिल है मुश्किल से।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या

0: दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च।
1: ये ट्रैफिक
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में एमपी टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सुबह से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद भोपाल, सीहोर, रायसेन में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे मैच का बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ। 25-25 ओवर के इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म सोल्जर से।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सोल्जर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सत्या फिल्म से, आवाज़ है आशा भोसले और सुरेश।

विशाल का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सत्या से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है रेमो फर्नांडेस और जसपिंदर नरूला की आवाज में, फिल्म प्यार तो होना ही था से।

जतिन ललित का संगीत समीर के लिखे बोल, रेमो फर्नांडस और जसपिंदर नरूला की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म प्यार तो होना ही था से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कमाल खान की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

जतिन ललित का संगीत, समीर के लिखे बोल, कमाल खान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मेजर साहब से। आवाज है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

आनंद राज आनंद का संगीत और उन्हीं के लिखे बोल साथ थे देव कोहली। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आपने गीत सुना फिल्म मेजर साहब से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत हम आपको सुनाएंगे कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है संजीवनी। फिल्म का नाम है करीब।

अनु मलिक का संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल संजीवनी और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है अलका याग्निक और फिल्म का नाम है गुलाम।

जतिन ललित का संगीत समीर के लिखे बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुलाम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है कविता कृष्णमूर्ति और फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

अनु मलिक का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म डुप्लीकेट से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है विनोद राठौड़ की आवाज में। फिल्म का नाम है दूल्हे राजा।

आनंद मिलिंद का संगीत समीर के लिखे बोल विनोद राठौर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दूल्हे राजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है अलका याग्निक, पूर्णिमा और उदित नारायण। फिल्म का नाम है आंटी नंबर।

आनंद मिलन का संगीत समीर के लिखे बोल, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और पूर्णिमा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आंटी नंबर वन से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य प्रसारित होगी रात 8 बजे। कार्यक्रम संस्कृति भारती प्रसारित होगा रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर।

कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा कल शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 7:45 पर सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुनिएगा कल सुबह 7:20 पर। सुरमई सवेरा सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा अभिलाषा मिश्रा द्वारा गाए बघेली लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुनहान सुनवाया जाएगा कल सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुन सकेंगे सुबह 10:00 और सामुदायिक गान शिक्षण पाठ कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
2: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती

0: कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
1: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। श्री प्रधान ने यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं इतना पड़ता था और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
2: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अधिकतर लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया। और
0: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
4: मध्यप्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एवं एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 में एमपी टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने आरटीओ कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी, जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहाँ 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा, जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि, नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान।
1: चौपाल में बैठे और चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैयान को रेणु राजा की राम राम। और आज हमारे संगे बैठी हैं गीता बहन। सुगीता बहन आपको भी हमारी राम राम।
0: राम राम रेणु बहन और सगे सुनने वाले भैया बहन का जय भी गीता बहन की राम राम।
1: और बहन कैसी हो?
0: बस
1: हाल चाल है
0: बहुत
1: अच्छी। खेती किसानी में क्या चल रहा हो बहन?
0: देखो अपन जो देख ही रहे हैं कि खेती किसानी में अब खरीफ की फसल की बोने की तैयारी चल रही है।
1: हाँ
0: है ना। अपन देखें तो अब एक खेत खाली पड़े थे।
1: बिल्कुल।
0: और बताइए देखो गर्मी भी पड़ रही है तो जो इतने कस के जो गर्मी पड़ रही है वह टाइम पे अपन औरन को मतलब ऐसे मौसम में अपन औरन को जो है ये बात को ध्यान देना चाहिए कि अपन बीमारियों से बचे रहें। कैसे कि हाल ही मौसम बदल जाते हैं तो ठंडों से गर्म गर्म से ठंडो हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ध्यान रखना चाहिए। और खरीफ फसल की अपन बात करें तो देखो अगर अपन भैया जो है खेती बाड़ी में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं
1: बिल्कुल
0: तो बाकी लाने मुलक जरूरी है कि जमीनी स्तर से वो तैयारी करें।
1: हाँ।
0: तो सबसे पहली बात जो आती है वो जमीन की आती है यानी कि मट्टी की आती है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि पर जो भैया हैं बिन्ने मट्टी परीक्षण तो कराई ला होगो।
1: बिल्कुल।
0: और जाके बाद में बहुत जो अहम बात आती है वो गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई की आती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे बहन आप। खरीफ फसलन की बुवाई में कहा है कि पहले खेती की गहरी जुताई करके जैसे कहा के अच्छी मिट्टी में धूप लग जाते हैं।
0: हाँ। कीड़े मकोड़ा जो हुए हानिकारक वो नष्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल। और कहा जाके अलावा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: है? और जाके अलावा
0: लग रही की संभावना कम रहते हैं।
1: हाँ,
0: में
1: हाँ। मामा कहो के देखो नीचे की मिट्टी ऊपर ऊपर की मिट्टी नीचे
0: हो जाते हैं।
1: हाँ तो नीचे जो कीड़ा जीव जंतु रहते हैं जो खराब अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वे मर जाते हैं घाम से।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो सबसे पहले अपन ने बात करी कि मिट्टी को परीक्षण कराना जरूरी है उत्पादन लेंगे। फिर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 2 और 3 साल के बीच तो गहरी जुताई जरूरी कराना चाहिए और 9 से 12 इंच तक गहरी जुताई कराना चाहिए है ना। और जाके बाद अपन को बीज को चयन करना होते हैं कि भैया बीज आप घर का ले रहे तो भाई छांट के काट छांट जो खराब बीज होते
1: हैं तो वह हटा दें और बाकी अच्छी वो कर लें
0: और अंकुरण क्षमता जरूर देख लें। कैसे कि अंकुरण क्षमता के आधार पर ही अपन बीज की मात्रा को बड़ा घटा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यदि आप बाजार का बीज ले रही हैं तो प्रमाण संस्था से लेना चाहिए। कैसे कि वो बिल्कुल अंकुरण क्षमता जांची हुई होती बाकी तो वो बीज अपन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अंकुरण क्षमता जरूर देखना चाहिए वो बहुत अच्छा तरीका आप सभी जानते हैं।
1: हाँ।
0: अब जाके बाद बारिका आती है भैया बीज उपचार के बिना तो बोनी करना नहीं चाहिए। तो जितने रकबा में आपको बीज को बोनी करनी है वो दिना आप भाई के हिसाब से जो है बीज उपचारित कर लें और जाके बाद ही वो बोनी करें।
1: बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखो जब जाला एक बरसात हो जाए
0: कि 2-3 पानी पड़ जाए।
1: हाँ।
0: और नमी थोड़ी अपने खेतन में आ जाए। हाँ। तभी अपन उनको जो है बोनी करना चाहिए।
1: हाँ बहन। और एक और बात को और जब ध्यान रखना रखो के बुवाई से पहले जो अपने सड़ी भई गोबर किया कंपोस्ट
0: वो डाल के छोड़ दें
1: भाई खेत में अच्छी तरह से मिला दें।
0: और देखो एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सगाई तैयारी जो है पहले करके रख लें यानी खाद बीज को इंतजाम कर लें पहले। ऐसा नहीं हो कि टाइम आ जाए बोनी को और ना खाद हो ना बीज हो तो ये तैयारी करके देखे। रेनू है अपन आगे और बतियांगे पर पहले सुनाते हैं ये जरूरी संदेश।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
1: तो बहन देखो अब जी तो भाई अपनी खेती किसानी की बात और अपन ने सुनो जो संदेश।
0: हाँ।
1: अब का चर्चा कर रही।
0: देखो अपन बात कर रहे हैं अब खरीफ की फसल की बोनी की तैयारी तो अपन ने कर ली कि भैया बोनी की तैयारी से पहले कछु बात इनको अपन और इनको ध्यान देना चाहिए है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपनी जो जनसंख्या है वो तेजी के संग बढ़त जा रही है।
1: हाँ।
0: और अपन सभी जानते हैं कि भाई बढ़त भाई जनसंख्या जल जंगल जमीन पे यानी इसका भार पड़ रहा है।
1: बिल्कुल पड़ रहा
0: है ना। अपन देख रहे हैं कि आज पीवी के लाने पानी बहुत मुश्किल पड़ रहा है।

0: खेती तो बिना पानी की होत नहीं है। जाके अलावा अपन देख रहे हैं कि जंगल जो है कटत जा रहे हैं, और बंटवारे के लाने खेत बटत जा रहे हैं, और जमीन तो उतर गई है, संसाधन भी उतर गई है। तो विचारणीय प्रश्न ये है बहन कि आज अगर अपन ने बढ़त हुई जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करो तो एक विस्फोट का रूप ये ले लेगी।
1: बिल्कुल सही कह रही बहन। देखो अपन देखते हैं कि अपने पूरा पड़ोस में कितों छोटो परिवार है और कोई को बड़ो परिवार है, तो अपन देखते हैं कि बड़े परिवार में बड़ी कलह की स्थिति हो है और सुख शांति से भी नहीं रह पाते, और जितनी तरक्की करें चाहिए बच्चन को या उनके परिवार को नहीं हो पाते। और जय छोटो परिवार है, कत नहीं है कि छोटो परिवार सुखी परिवार, तो छोटो परिवार है तो वे अपने बच्चन की देखभाल अच्छी कराते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं।
0: पहले कहा तो कि एक कमाता तो और सगा परिवार खाता तो कैसे महंगाई नहीं होती, लोगों की जरूरतें इतनी नहीं होती है ना, तो एक ही कमाई से पार पड़ जाती। आज अपन देख रहे हैं कि घर में चार लोग हैं तो चार लोग कमा रहे हैं, बापे भी मोड़ा मोड़ी इनकी परवरिश करना मुश्किल हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रही।
0: तो अगर अपन सिर्फ बच्चन के जन्म से ही सिर्फ एक अच्छे माता पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती बहन, ये ध्यान भी रखना चाहिए कि बिना परिवार नियंत्रण का मतलब ये है कि बिना अपन की जो जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अच्छे संस्कार की, पोषण की, वो सब भी अपन बिना समय पे दें।
1: बिल्कुल।
0: तो जय के लाने परिवार को छोटो रखने का संदेश दो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही है ना आप। तो जाके लाने देखो परिवार छोटो रखने के लाने जरूरत है शिक्षा और जागरूकता की। कैसे कि देखो सब लोगों को विशेषकर जो युवाओं के जो हैं उनको जो समझने हो कि छोटे परिवार के लाभ का है।
0: बिल्कुल,
1: है? सो जैसा जरूरी है कि शिक्षित जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो जो चीज समझेगी।
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: हैं। अब देखो भैया हमारे बहन भैया से जो ही वो है कि परिवार नियोजन के जो साधन है अपने सरकारी अस्पतालन में फ्री मिलते हैं, आपके हिसाब से जो उपयोग हो गए सुबह को उपयोग करें और परिवार को छोटो रखें। और जो निःशुल्क मिलते हैं इनकी कोई पैसा नहीं लगाते हैं और आपको कुछ सलाह लेने तो सरकारी अस्पताल में जाके आप सलाह भी ले सकते हैं कि परिवार को आप कैसे छोटो रख सकते हैं, है मैन। और हाँ
0: देखो अपन जी कह रहे हैं कि परिवार जब छोटो होता है तो सुखी होते हैं, आपने जैसे बताई बिल्कुल सच है। कैसे कि अपन परिवार में एक या दो मोड़ा मोड़ी होंगे तो अपन जो है इन पे पूरी तरीका से ध्यान दे पाएंगे, इनको अच्छी तरह से लालन पालन कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे, संस्कार दे पाएंगे, जहाँ से अपना परिवार समाज और देश जो है संपन्न भी हो, मजबूत भी हो। और देखो ज्यादा जनसंख्या है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं कर रही, लूटपाट जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, और भी मुलक सी समस्या, खाद्यान्न की समस्या सबसे बड़ी आ जाते हैं कि अपन बाकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कैसे कि साधन तो बीते गई है ना, और अपन को अब सब सीमित साधन में ही अपनी पूर्ति करनी है। तो जो बात को अपन को ध्यान रखना है कि परिवार छोटो होगो तो अच्छे होगो, और जैसे क्या लिंग भेद भी मिटेगो, बेटा हो या बेटी दो एक समान है।
1: तो अपन देखते हैं कि आप परिवार को अपना छोटो रखो, जो हिसाब से आप कर सका तो वह हिसाब से अपने परिवार को छोटो रखे और अपने बच्चन को अपने परिवार
0: अच्छी परवरिश दें।
1: तो बहन चौपाल कार्यक्रम से अब हमें इजाजत लेते हैं। तो अपनी बहन को देव आ गया किसान बहन भैया, राम राम,
0: जय जवान जय।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैया को रेणुराजा की राम राम। वो हमारे संग बैठी हैं गीता बहन। सो गीता बहन आपको भी हमारी राम
5: राम, राम, राम। रेणु बहन और सगे किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले भैया बहन अनिका जी भी गीता बहन की राम राम। और देखो रेणु बहन, अब क्या बात कर रही हैं आप?
4: हम जो कह रहे हैं बहन कि देखो केंद्र सरकार ने 12 साल सफलतापूर्वक हो गए उनके हैं। तो भैया जय, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जाए के अपन PMFBY कहते हैं, भारत के किसान के लाने सबसे बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच बन के उभरी है जो योजना। और बहन जो योजना प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश या कीटों के हमले से खराब भई फसलन को नुकसान पे किसानन को सीधो मुआवजा दिए थे,
5: यानी फसल का सुरक्षा कवच है ये बीमा योजना।
4: हाँ बहन
5: बिल्कुल सही।
4: जा योजना की जा विशेषता है, जा में कछु लाभ भी जात रास है, जैसे कि सस्तो प्रीमियम है जा।
5: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जा की जो प्रीमियम राशि है बहुत ही कम होते हैं ना।
4: किसानन को अपनी फसल बीमा के लाने केवल एक मामूली प्रीमियम को भुगतान करना होते। चाहे खरीफ फसलें हों, जा के लाने अधिकतम 2%, रवि के लाने 1.5%, और नकदी बागवानी फसलन के लाने 5%
5: जो है,
4: बाकी बचे हुए प्रीमियम को भार राज्य और केंद्र सरकार
5: है
4: सब्सिडी के रूप में देते हैं।
5: बिल्कुल सही
4: है। अब जाके अलावा है व्यापक कवरेज, जहाँ में बुवाई से लेकर कटाई तक के नुकसान, जैसे कहूँ किसान ने बुवाई कर दी,
5: कभी ओला बरस जाते हैं, कभी बरसात नहीं हो, कभी पानी भर जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कोई रोग व्याधि किरण में लग जाता है, भगवान ना करे सूखी लाग लगी बा में आग लग जाते है, तो हर तरह के नुकसान की भरवाई ये कवच से हो जाते हैं फसल बीमा योजना से।
4: हाँ, और वैकल्पिक जा में भागीदारी है, जा में खरीफ 2020 के बाद सभी किसानन के लाने, चाहे उनने बैंक से लोन लाओ हो या ना लाओ, उनके लाने जो योजना शामिल, जो योजना में शामिल हो वो पूरी तरह से स्वैच्छिक है, हैं उनकी इच्छाएं तो हो सकता तो नहीं हुए तो नहीं की बात। जामे किसान कौन तरह से आवेदन कर सकते है? जामे योग्य किसान अपने पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पोर्टल के माध्यम से कर सकते है, और जाके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय,
5: बैंक
4: शाखा, जनसेवा केंद्र, जाए अपन CSC कहते हैं, या अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करके रवि और खरीफ फसलन को बीमा करवा सकते हैं। जाको लाभ लेवे के लाने पंजीकरण करवाए जाके लाने जो कागज लगाते हैं, वे आधार कार्ड, भूमि को रिकॉर्ड, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक और फसल बोवे को प्रमाण, जे आवश्यक दस्तावेज लगाते हैं।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: तो आखिर में हम जो ही कहे हैं बहन,
5: कर सकते हैं अपन है ना,
4: कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सेवा सुशासन और जन कल्याण के सफल कार्यकाल में किसानन को प्राकृतिक आपदाओं से एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करो है, और जो योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत पे काम करते है।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं रेणु बहन, ये तो एक अच्छी योजना चल रही है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे किसान भैया ने योजना को लाभ जरूर लाओगे, और जो भैया बहन जो कछु कारण से नहीं ले पाए तो बिना भी जो योजना को लाभ जरूर लेना चाहिए। काहे से भैया इतने एक मेहनत अपने किसान भैया कर रहे थे, और कबों कहूँ प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा पे तो कोनों को जोर नहीं है।
4: बिल्कुल नहीं, तो भगवान की मर्जी है,
5: उसके आगे कोनों को जोर नहीं हो। तो जब इतने एक अच्छी योजना चल रही, तो जाको लाभ लेके अपनी फसल को हर तरीका से कम प्रीमियम पर अपनी फसल को सुरक्षा कवच जरूर दें। और देखो अब अपन बात कर रहे हैं कि खरीफ फसल की बोनी को समय आ गया है, और अब कुछ दिन बाद जब बरसात हो जाएगी तो अपने किसान भैया जो हैं बोनिंग शुरू कर देंगे। तो अब बोनी करें वास्ते पहले कछु बात है इनको ध्यान रखना चाहिए, खास करके बीज को लेके, कैसे कि उत्पादन वही से प्रभावित होते हैं। अपन ने पहले भी बात करी थी कि बीज शुद्ध होगो जितने अच्छे होगो
4: और उपचार उपचार करने,
5: तो जरूरी है कि वहां को अच्छी तरीका से अपन जांच परख के बोएं। तो अब किसान भैया कौन कौन सी बात इनको ध्यान रखें या कैसे बीज का चुनाव करें, कौन कौन सी जानकारी बिने होना चाहिए, सगई बात की जानकारी खिलाने हम बिने सुनवारा ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता जी को विषय है खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच।

0: वार्ताकार भैया हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी और जिनसे बात कर रहे पे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो चलो सुनाते हैं जी भेंट वार्ता।
1: किसान श्रोताओं नमस्ते। मौसम इस समय जो चल रहा है, या यूं कहें कि इस समय जो ऋतु चल रही है, इस समय जायद की बात की जाती है, लेकिन एक अच्छा किसान वही होता है जो भविष्य की तैयारियों को देखते हुए अपने कृषि कार्यों को करे। अगर इस समय हम खरीफ की बात करेंगे तो एकदम लगेगा कि ये समीचीन नहीं है, लेकिन जो मैंने पहली लाइन कही कि अच्छा किसान वही है जो दूर निगाहें रखे, दूर दृष्टि अगर वो आज अपनाएगा तो भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स पाएगा। तो आज इसी तरह का एक विषय है, वो है खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं। सर नमस्ते, सभी सुनने वालों के मध्य में
2: नमस्कार साहब, और सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार।
1: जैसा कि सर मैंने विषय कहा कि खरीफ पूर्व बीजों का शोधन एवं जांच इस समय क्यों जरूरी है, पहले तो ये
2: बीज का शोधन मैं दो भाग में समझता हूँ। एक भाग तो ये कि बीज का शुद्धिकरण करना या बीज की सफाई करना, और दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है बीजों का उपचार। तो बीज शोधन का मतलब हमारा इस समय किसान भाइयों से ये है कि अभी खरीफ में और अभी में लगभग उनको 1.5 महीने का गैप मिल रहा है, तो इस बीच में अपने जागरूक किसान हैं उन लोगों को देख लेना चाहिए, उनके पास जो पिछले वर्ष का बीज रखा हुआ है खुद का, या कहीं से बाहर से लाते हैं तो बाहर से लाते हैं बीज, हो सकता है प्रमाणित बीज लाएं, आधार बीज लाएं, अच्छा क्वालिटी गुणवत्ता वाला बीज लाएं। लेकिन कई बार किसान स्वयं का भी बीज उपयोग करते हैं, और ज्यादातर किसान यही है, कम से कम 70-90% तक किसान अपना स्वयं का बीज उपयोग करते हैं।
1: महंगा भी है और हाँ। खुद के बीज पे ये है कि वो भरोसा है, क्योंकि हमने पिछली बार प्रोडक्शन के लिए लिया था,
2: जो खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर अपना स्वयं घर का रखा हुआ अनाज ही बीज के रूप में उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग करने के पूर्व आवश्यक जो उसमें शोधन है वो करना चाहिए। पहला तो बीज का शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण ऐसा कि जैसे किसान जो होता है वो बीज का उत्पादन तो करता नहीं है, वो अनाज का उत्पादन करता है, और अनाज को मार्केट में या स्वयं के उपयोग में लाने के बाद जो है ना कुछ हिस्सा उसका बचाकर बीज के लिए रखता है। कई किसान भाई ये मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि वो रखा हुआ अनाज को सीधे बोनी कर देते हैं जब बोनी का समय आता है तो। लेकिन मैं कहता हूं कि उस अनाज को भी बीज के रूप में कुछ संशोधित कर ले किसान भाई, तो वो काफी जो है ना नुकसान से भी बच जाएंगे और जो बीज का लाभ होता है वो लाभ भी उनको मिलेगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो बीज जिसको बनाना चाह रहे हैं तो उसको सबसे पहले साफ सफाई कर लें, छनाई कर लें, और उसको जो है ना अगर रोग और कीड़ों से अगर उसमें प्रकोप है तो उससे मुक्त कर लें, उसके लिए सही समय पे सुखा लेना चाहिए, और उसको छन्नी लगा करके ग्रेडिंग करके उसको बीज को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे जो अनाज होता है, अनाज में बीज के अलावा कई चीजें होती हैं, तो उसमें कुछ छोटे आकार के दाने होते हैं जिनको अंडर साइज बोलते हैं वो भी रहते हैं, कुछ दाने थ्रेसिंग के टाइम में डैमेज हो जाते हैं, टूटे फूटे दाने रहते हैं वो भी रहते हैं, कुछ फसलों के अवशेष भी उसमें मिक्स हो सकते हैं, कुछ मट्टी भी आ सकती है, तो ये सब चीजें उसमें मिले रहते हैं अनाज में। तो इनको अगर किसान भाई छनाई कर लें, पहले साफ सुथरा कर लें, तो एक शुद्ध जो है ना उनको जो बीज के लायक दाने हैं उनको अलग किया जा सकता है, तो वो कर लें। तो एक जो अनावश्यक जो दाने या अनावश्यक चीजें बीज के साथ जो फेंक दिए जाते हैं, अंडर साइज दाने भी फेंक दिए जाते हैं, तो वो बच जाएंगे, और दूसरा अच्छा बीज जाएगा गुणवत्ता वाला, तो पौधे भी जो उससे निकलेंगे उगेंगे वो अच्छे गुणवत्ता के पौधे भी अच्छे क्वालिटी के निकलेंगे, तो उनसे निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो एक तो ये हो गई कि साफ सफाई। अब जितने कोई भी फसल की बात करो, आप चाहे सोयाबीन की बात कर लो, धान की बात कर लो, या मूंग उड़द की बात कर लो, जो भी किसान भाई खेती करते हैं, जो भी फसल लेते हैं, तो उन सब में एक जैसा ही है कि सबका जो है ना बीजों का सही शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है।
1: प्रोसेस सबके लिए एक है,
2: प्रोसेस सबके लिए एक है, उसमें छन्नी लगाना पड़ेगा, उनका अंडर साइज जो कचरा अलग करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा उसमें धूल धक्कड़ है ऐसी चीजें मिली है तो उसमें हवा से पंखा लगा के उसको भी हटाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है,
1: धोया जा सकता है,
2: वो एक अलग उपचार हो गया। कुछ दाने हैं जिनको धोया भी जा सकता है, जैसे धान का होता है वो एक नमक उपचार होता है, उसको मैं बताऊंगा। तो ये तो काम कर ले किसान भाई, और अभी भी गर्मी के जितना भी समय मिला है, कभी भी जब भी उनको समय मिले तो ये काम कर लेना चाहिए बोनी के समय आने के पहले पहले। और ये साफ सफाई करने के बाद बीजों का, फिर आता है बीज उपचार की बात। तो ये जनरली जब बोनी का समय आता है तभी जो है ना बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार भी आवश्यक होता है, जैसे बहुत सारे बीमारियां होती हैं वो बीज के साथ जाती हैं खेत में और फसल में आती हैं, तो उनसे मुक्त करने के लिए बीज को उपचारित करें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जमीन से बीज में अटैक करती हैं या बीज से जब निकलने के बाद पौधा उस पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए भी उपचारित किया जाता है।
1: उसके लिए कोई दवा?
2: उसके लिए बिल्कुल दवा है। तो जैसे जब बोनी करने जा रहे हो, अभी आप धान का नाम लिए थे
1: जी,
2: तो धान में एक उपचार होता है उसको सलाइन वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं या नमक का पानी, नमक का घोल उपचार कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जिस बीज को हमको धान का जो हम अनाज के रूप में जो धान है उसको अगर बीज में परिवर्तित करना है तो उसका जो उपचार है इस तरह से करें कि 10% नमक का पानी बनाए। उसके लिए क्या करना है, 10 लीटर पानी और 1 किलो नमक ले, उसमें जो है ना बीज को डुबाएं। तो उसमें कई बार क्या होते हैं, पोचे दाने हैं, धान के पोचे दाने होते हैं जिसके अंदर हाँ ऊपर से छिलका रहता है लेकिन अंदर दाना या बीज नहीं होता उसके अंदर,
1: अंदर मटेरियल
2: ऐसा भी होता है। कुछ दाने बीमारी ग्रसित दाने होते हैं, जैसे उसमें एक बीमारी आती है लाई बोलते हैं देसी भाषा में बोलते हैं, वो दाने जो है ना उसमें एक फाल्स स्मट होता है जिसे लूज स्मट गेहूं में आता है, उसी टाइप का एक फाल्स स्मट बीमारी धान में भी आती है जिसमें दाने बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर का जो चावल होता है वो फफूंदियों के द्वारा जो है ना राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो फट जाता है, मोटे हो जाते हैं और वो दाना जो है ना हल्का हो जाता है। तो ऐसे दानों में जिन भी इन्फेक्शन हुआ है वो दाने भले मोटे ना हुए हों कई बार या फटे ना हो लेकिन देखने में ठीक ठाक लगे, लेकिन अगर इन्फेक्टेड दाने हैं तो उनका वजन कम हो जाता है, बहुत हल्के हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सब जो अनावश्यक चीजें हैं तो अगर हम नमक पानी में उनको डालते हैं तो वो सब हल्के होने के कारण तैरते हैं, उनको जो है ना अलग कर लिया जाता है, उनसे छान लिया जाता है तो बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। दूसरे अगर ग्रेडिंग छन्नी लगाते हैं तो उससे अलग नहीं होते हैं।
1: यानी
2: तो,
1: कि धान के बीज के लिए ये नमक के घोल में हमें हाँ, उसका उपचार करना
2: उपचार कर सकते हैं।
1: तो ये तो हो गई शोधन की बात या
2: शुद्धिकरण की बात।
1: शुद्धिकरण और शोधन में कुछ फर्क है?
2: शुद्धिकरण में सब चीजें आ जाती हैं, शोधन में भी है मुख्य रूप से वैसे उपचार आता है
1: जी।
2: लेकिन उपचार के पहले उसकी साफ सफाई भी उसी का पार्ट है।
1: और अब जांच अगर इसमें जो शब्द है हमारे विषय में,
2: तो अभी तो उपचार की बात बची है
1: जी।
2: तो उपचार लेकिन अभी से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली जब बोनी के समय आता है उसी समय उपचार करना रहता है। तो जिसे धान की बात की है हम, तो धान का तो इस तरह से कभी भी कर सकते हैं, नमक के पानी से अगर धान का उपचार करते हैं तो उसको नमक के पानी में धान को डाल करके उसके जो हल्के दाने हैं, हल्की चीजें हैं या रोग ग्रसित दाने हैं वो सब तैरते हैं, तो उनको छान के अलग किया जा सकता है। उसके बाद उनको कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी में धोएं ताकि जो नमक का पानी का अवशेष है उसमें वो अलग हो जाए, क्योंकि नमक उसमें चिपका नहीं रहना चाहिए, अगर वो होगा तो नुकसान भी करेगा। तो अच्छे से 2 या 3 बार उसको फिर धोना चाहिए, धो करके वो सुखा के रख लें उसको दाने को। और फिर उसके बाद जब बोनी के समय आता है तो बोनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है बीज का उपचार, उसमें रासायनिक भी है जैविक भी है। रासायनिक में ये है कि जो मुख्य बीज जनित जो रोग होते हैं या मृदा जनित रोग होते हैं, तो इन दोनों तरह के रोगों को कंट्रोल करने के लिए बीज का उपचार किया जाता है। उसके लिए अगर रासायनिक बात करें तो रसायन में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे बहुत कई किसान भाई जानते भी होंगे थायरम नाम की दवाई आती है, थायरम और बाविस्टीन ये दवाई आती है। आजकल कुछ नए मॉलिक्यूल भी है ना, बीटावैक्स पावर है जिसमें कार्बोक्सिन और थीरम का वो कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी रासायनिक दवाइयों से अगर हम उनको बीज उपचार करते हैं तो 2.5 ग्राम दवाई 1 किलो बीज में लगता है। तो इस तरह से जो है ना उसको हम रासायनिक दवाई से उपचार कर लेते हैं। तो उसके उपचार करने के बाद बोनी करते हैं तो उसमें फिर बीज से जाने वाली बीमारी हो या जमीन से आने वाली बीमारी हो, दोनों ही कंट्रोल होती है। तो ये जो बीज का उपचार करते हैं इसका असर रहता है लगभग 25 से 30 दिन रहता है। तो शुरुआती अवस्था में पौधे जब उगते हैं, अंकुरित होते हैं, उस समय बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं और उसी समय कई बार बीमारियों का प्रकोप होता है खेतों में। तो अगर हम उपचारित किए रहते हैं तो वो बच जाते हैं, उनमें रोग का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया। दूसरा एक कुछ जैविक उपचार भी है। जैविक उपचार में एक तो रोगों से बचाने वाला जैविक उपचार भी होता है, एक उसमें एक ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी का ही कल्चर होता है जो बीज को उपचारित करने से, या उसको मृदा उपचार भी कर सकते हैं उससे, तो लेकिन सरल होता है बीज का उपचार करना। अगर बीज का उपचार उससे करते हैं, 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज में लगता है और बाजार में मिलता है, वो सब जगह सस्ता रहता है और रासायनिक नहीं है, जैविक है, तो पर्यावरण के लिए भी नुकसान नहीं करता है। उससे उपचारित कर देते हैं तो जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं और खासकर जो मृदा से आने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ऐसी फफूंदी का कल्चर है जो दूसरी फफूंदियों को जो खेत में बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको ये नष्ट कर देता है, खा लेता है उनको, तो इससे भी उपचार कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जैविक उपचार है। इसके अलावा कुछ कल्चर रहते हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर ही कहते हैं, जैसे राइजोबियम है ना, PSB और दूसरे तत्वों के भी आजकल मार्केट में कल्चर आने लगे हैं, पोटास के लिए भी आता है, सल्फर के लिए भी आता है, तो इनसे भी हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। पहले ये कल्चर जो है ना पाउडर फॉर्म में आते थे, इनके पैकेट 200 ग्राम के पैकेट मिलते थे।

0: बाजार में। अभी जो है ना ये पाउडर भी कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आजकल लिक्विड फॉर्म में आने लगे हैं, तो इनसे भी बीज को उपचारित करना चाहिए। और खासकर यदि जैसे दलहन फसल है, दलहन में फसल जैसे सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, उड़द वगैरह करते हैं किसान भाई खरीफ में, तो उनके लिए भी रख लें, राइजोबियम भी रखें और पीएसबी कल्चर दोनों रखें। तो राइजोबियम का काम होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में वो गठानों का निर्माण अच्छा करता है और वहाँ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वो प्लांट के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको उपलब्ध करवा देते हैं। वहीं पीएसबी कल्चर जो है, जड़ों के आसपास जो मिट्टी में फिक्स फास्फोरस होती है उसको सॉल्युबलाइज करता है, उसको जो है ना अवेलेबल फॉर्म में लाता है और पौधों को जमीन से फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देता है। इससे पौधों का जो जड़ों का विकास है और उसका ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा बनता है, तो ये इनसे भी उपचार करना चाहिए। तो ये शोधन के ही पार्ट है। इसके अलावा आप कह रहे थे बीज की जाँच,
1: जी
0: बीज की जाँच बहुत जरूरी होती है। खासकर किसान भाई अपने घर का अनाज अगर बीज के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसका निश्चित रूप से जांच किए बगैर बोनी न करें, क्योंकि जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है बीज को, तो उसमें कितना अंकुरण बचा हुआ है, कितना, क्योंकि हार्वेस्ट होता है जब कोई भी दाना, उस समय अंकुरण उसका जो है 100% होता है। अगर अच्छे से उसको सही सावधानी से थ्रेसिंग करके रखा जाए तो 100% उसका अंकुरण की क्षमता होती है, लेकिन वहां से घर में आने के बाद या भंडार में रखने के बाद उसका धीरे धीरे जैसे समय पास होता है वैसे उसे उसका अंकुरण कम होने लगता है। और ये डिपेंड करता है कई परिस्थितियों पर, जैसे रखे जाने की जगह पर टेम्परेचर कैसा है और रखे जाने के समय उसके अंदर मॉइस्चर कितना था, नमी कितनी थी बीज के अंदर, ये फैक्टर उसको जो है ना प्रभावित करते हैं। चूंकि हमसे कम से कम 5 से 6 महीने तक रखना पड़ता है कोई भी दाने को, उसके बाद उसका बोनी टाइम आता है, सीजन आता है, तो हमको जो है ना उसकी जांच एक बार कर लेना चाहिए कि आज अभी के समय में बोने के टाइम पे उसमें अंकुरण की क्षमता कितनी बची है, तो उसी के अनुसार से वो बीज बोने लायक है या नहीं है ये भी निर्धारित होता है। और दूसरा, अगर जैसे अंकुरण कुछ कम होता है तो बीज दर थोड़ी बढ़ा करके उसकी पूर्ति कर ली जाती है। तो ये दोनों ही उद्देश्यों के लिए बीज का अंकुरण जानना बहुत जरूरी होता है। अंकुरण जानने का बहुत सरल तरीका मैं बताऊंगा, किसान भाई उसको बहुत आसानी से अपना सकते हैं। उसके लिए उनको किसी विशेष की जरूरत नहीं है और न ही बहुत साधनों की जरूरत है, क्योंकि किसान भाइयों के घर में सबके यहाँ थाली होती है। एक थाली लें जिसमें 1 से 2 किलो तक मिट्टी आ जाए, तो वो कहीं भी खेत का अपने मिट्टी अच्छी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा उसमें चाहे तो अगर गोबर की खाद हो वो भी मिला लें, बढ़िया उसको बारीक कर लें मिट्टी को और थाली में भर लें। भर करके उसमें 100 दाने लें, जो बीज उनको अपना उपयोग करना है उस बीज के 100 दाने लें और रेंडमली 100 दाने लें। उसमें चुन चुन के नहीं कि अच्छे अच्छे वाले बीज चुन चुन के देख देख के ये जो बहुत अच्छा है, अच्छा साइज है, अच्छा चमक है, वो वाला बीज चुनना नहीं है। रेंडमली उठा के मुट्ठी में लिए और 100 दाने गिन के ले लें। 100 दाने उस मिट्टी में 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा दबा दें उंगलियों से रख के, अलग अलग पूरे 100 दाने दबा दें और उसके बाद उसमें पानी डाल दें, सिंचाई कर दें और उसकी जो है ना रोज एक बार कम से कम सिंचाई करते रहें। लगभग 7 दिन में, 5 से 7 दिन में ज्यादातर बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो 7 दिन बाद उसका काउंटिंग कर लें, गिनती कर लें कि कितने बीज अंकुरित हुए हैं, कितने उसमें अंकुर दिख रहे
1: हैं,
0: वो सीधा सीधा परसेंट हो जाता है।
1: एक प्रश्न और आता है
0: जी,
1: कि जो किसान अपने घर पे बीज बोने के लिए रखते हैं आगे के लिए, मतलब अगले वर्ष के लिए, और जो बीज बाजार में मिलता है,
0: हाँ,
1: दोनों में कुछ फर्क आएगा प्रोडक्शन में?
0: हाँ बिल्कुल फर्क आएगा, क्योंकि जो बाजार का बीज है अगर वो सही तरीके से उसमें किसी तरह का अगर फ्रॉड नहीं हो रहा है, अगर सही बीज है तो वो अच्छा गुणवत्ता वाला बीज होता है, उसमें उत्पादन लेने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेप पे मेंटेन किया गया है, सावधानी के साथ उत्पादन किया गया है, फिर उसका ग्रेडिंग भी होता है, फिर उसका अंकुरण की जांच भी होती है और मिनिमम स्टैंडर्ड को वो प्राप्त करता है तभी बीज के रूप में उपयोग किया जाता है और उसको अनुमति मिलती है बाजार में आने के लिए,
1: सर्टिफाइड,
0: बिल्कुल सर्टिफाइड जैसे बीज होता है
1: जी, तो ये,
0: लेकिन ये अंतर है। और किसान का जो घर में रखा वो तो अनाज रखता है ना, वो बीज तो रखता नहीं ना, तो खेत में प्रोडक्शन के टाइम में वो सावधानियों को बरतता है जो बीज के लिए चाहिए ना, वो किया जाता है, और कई बार किसान भाई उसका शोधन नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोनी करते हैं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बीज जो उनको अपने बीज उपयोग करना है तो वो पहले से ही शोधन करें, उसका शुद्धिकरण करें और एक बीज के रूप में उपयोग करने लायक उसको बनाए। जो किसान के घर में रखा हुआ अनाज है, जो बीज के रूप में मार्केट में वो बीज है, तो यही अंतर होता है। अब उनको अपने अनाज को बीज के रूप में उपयोग करने के लिए बनाना पड़ेगा, उसी के लिए शोधन जरूरी है।
1: तो ये जो सारी बातें किसान भाइयों ने कल कर आई हैं, जो डॉक्टर पुष्पेंद्र जी ने कही, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप किसान कृषि विज्ञान केंद्र के, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर ऐसा विषय था कि खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच, तो खरीफ तो दूर है लेकिन समय निकलते देर भी नहीं लगती है, ये भी तय बात है। और आपको अपने घर के बीज में क्या तैयारी करनी है, किस तरह से जाँच करनी है, किस तरह से शुद्धिकरण करना है और किस तरह से आप उसे बीज रोपने की स्थिति में ला सकते हैं, और वनस्पत बाजार का बीज है, उसके भी परिणाम और दुष्परिणाम।

0: बात की। आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार किसान भाई।
2: भैयरों अभी अपन सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय तो खरीफ पूर्व बीजों का शोधन और जांच। वार्ताकार हते डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी और जिनसे बात कर रहे थे पे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो देखो अपन ने जो बातचीत सुन के जान लिया हो कि का तरीका से अपन अपने बीज को शुद्धता के साथ बो सकते हैं और प्रमाणित जांच करके जान सकते हैं कि कौन सा बीज शुद्ध है और कैसे अपन को अंकुरण क्षमता देखनी है और मुलक सी बातें अपन ने जो बातचीत के दौरान सुनी, उम्मीद कर रहे थे जो बातचीत को लाभ हमारे भैया जरूर लेंगे।
3: बिल्कुल बहन आप सही कह रही हैं और आप अपनी बातचीतें बहुत हो गई, अब किसान मन भैया इंतजार कर रहे होंगे उनको मनोरंजन करवाएं। है तो सुनत है एक जो लोकगीत, चाहे गाँव है चिरैया ने तो किसान मन भैया इनको सुनवाते हैं जो लोकगीत, तो बहन

0: काटो, काट दो, मैंने काट दिया इधर से। और बहन आपने लोकगीत तो बहुत अच्छे सुनवायो, और अब समय होगा वह चलवे को, तो भाई गीता बहन और
1: रेणु राजा को देव आ गया। किसान बहन भैया रो राम राम,
0: जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
2: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
3: नमस्कार।
2: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे

0: ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की, दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
1: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है वो पूरी करना, और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
0: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कम्प्लीट कर लिया?
1: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
0: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
1: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
0: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की

0: किया, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना, उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है, हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गाँव में भी ऐसा हुआ, गाँव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल

0: अलग सा गया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट, और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना, मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे हैं। जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक

0: पूछते हैं तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना, फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो भी खो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने पांचवे पर लाई और तीसरे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कह

0: कर लाए हैं। हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा, तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है, उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा, उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट

0: इंडिकेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी तीन बड़ी नीतियां थीं जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते? क्योंकि एक समय, जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
0: सकता,
1: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है।

0: क्योंकि बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से देखते
0: देखिए,
1: हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: इंदिराज सिंह ने दीप।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पड़ोसन से।

आर.डी. बर्मन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म पड़ोसन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमौजी से, आवाज है किशोर कुमार की।

मदन मोहन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल किशोर कुमार के आवाज में गीत सुना आपने फिल्म मनमौजी से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति

0: ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों कार्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
6: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
5: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's Slovakia visit.
7: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Palluruthi for Akashvani News from Bratislava.
5: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Evian on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on the 18th of this month to attend Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade, and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. We have a report.
8: Four new institutional initiatives were announced at the conference. Under the first initiative, a network of centers of excellence will be set up for joint research on natural and regenerative farming with the Indian Institute of Farming Systems Research, playing a key role. The second initiative involves setting up a BRICS digital agriculture network to bring artificial intelligence and digital technology into farming, which will be coordinated by IIT Delhi. The third initiative will establish a global forum to protect farmers' rights related to seeds and to preserve traditional seed varieties. The fourth initiative will set up the BRICS Agri-N network for sharing agricultural inputs and genetic resources among member countries. With Abhinav Goyal's report, Prashant Kumar Sinha for Akashwani News.
5: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of lives. In a social media post,

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामिया को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेती बाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआज़म का ये उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 5:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम डीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों, CEOs और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस एयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुत नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तहकम करने में भी मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि आवाम से आवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रातिस्लावा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जान बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और वकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक्दा 5 रोजा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ अख्तितम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के अख्तितम पर इंदौर आलामिया मुतफिक तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फराहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफिक काश्तकारी, जरई तजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी जरई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदामात का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मस्नूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तआवुन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान जरई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक के खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मस्नूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांवों से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजह करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के ثقافتی सफर में नुमाया तरक्की हुई है हुकूमत ने قومی और بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر مہاکال لوک پروجیکٹ ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی جونا سومنات مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तंजीम के सेक्रेटरी सोरो खैबम सरस चंद्र ने इलाकाई फनून के फरोग के लिए मजबूत माली मुआवनत फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया
1: इस बेदारी की खास बात से हमें ثقافت की وزارت से مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں
3: اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے
4: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है हमारे बहन भाई उन पे बोझ पड़े और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल पहले 3 रुपए कम हुआ था उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ 7 रुपए और 60 पैसे और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیراعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخان کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना, जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहां तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए माइने सामान्य, बी माइने उससे और कठिन, सी माइने और कठिन, डी माइने उससे भी कठिन, और ई माइने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है,

0: योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आईं और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साफ स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई, उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है। बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर کورز انہیں بھی کرنے پڑتے ہیں.
0: تو ابھی آپ لوگوں نے کیا طریقہ نکالا آدتیہ, جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں جب کورز کا ذکر آپ نے کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کورز زیادہ پاپولر ہیں؟
2: جی ہیں,
0: رادر دین یور اون کمپوزیشن.
2: بالکل ہیں, پر ہم تھینک فلی اس طریقے میں اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں کہ ہم کورز اپنے طریقے میں ارینج کر لیتے ہیں.
0: اچھا,
2: ہم بولتے بھی ہیں ویو کلفی فائیو ڈیٹ,
0: جیسے ابھی آپ نے ایگزامپل دیا سمبھو جو بندش ہے بڑے غلام علی خان صاحب کی, اس کو آپ نے تھوڑا ری ارینج کیا, اسے آپ نے ایک نیا ٹچ دیا.
1: اسی آئیڈیا کو لے کے مین اسٹریم گانوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھ کے ان کو پریزنٹ کرنا از واٹ وی ایز اے بینڈ آلسو ڈو.

उल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीते 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hain. Aur maine do line likhi thi Kaikeyi ka prasang ki Kaikeyi ke karan Ram van gaye, aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
1: देयर इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, अ सीन टू बिहोल्ड, टू सीइंग देम कम द शूर्पणखास अलर्चा द।
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
1: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
2: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, we bring you a saxophone recital by U Shiva Prasad. U Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani, composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Adi.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीना रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीना रामा, composed by त्यागराजा, is set to

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यूशिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूश प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Vridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ